बस नियत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है, शुरुआत भी। सुबह के 5 बज चुके हैं, आज है ट्यूसडे मॉर्निंग 30th ऑफ जून। इट्स योर राइज एंड शाइन ऑन रेडियो मस्ती।

Wherever you might be, stay well tuned, connected, rise and shine me. सुबह के 7 बजे तक, as always, आपके messages, पैगामों के साथ, on 5499-1294, जी हाँ, 5499-1294 पर, आपके messages का हमें इंतजार है. बस ये दिन, ये महीना भी खत्म होने चला, और चलते चलते बस एक नया पन्ना खुलने वाला है. नेक्स्ट मंथ माने कि कल से, तो बस डू गुड बी गुड, ऐसा जियो कि आज आखिरी दिन हो, एंड जितना हो सके मेक द बेस्ट मोस्ट ऑफ इट, एंड जितना हो सके किसी के चेहरे पर आप एक स्माइल लाओ, अच्छा काम कीजिए ताकि आपके साथ साथ बाकी सबका भी अच्छा हो जाए. व्हाटएवर यू माइट बी, स्टे वेल ट्यून्ड.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: होना तो नहीं चाहिए लेकिन हर कहां अगर कुछ अधूरा भी रह गया हो तो उनको हम पूरा कर देंगे इन गानों के जरिए 5499 1294. थैंक यू सो मच. चलिए आपके मैसेजेस की ओर बढ़ते हैं. इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. शुभ मंगलवार मिस्टर जयशन आपके पूरे परिवार के नाम. एंड गुड मॉर्निंग जी. यहाँ पर एज यूजुअल धीरज, आयुष, विधिशा, अश्विन एंड ज्योति हरक परिवार मौदाल वैसे. राम राम. शीला जी कैसी हैं आप? फ्रॉम लिस्पोंस त्रिबिशे. गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती टीम. गुड मॉर्निंग आपको भी. अब्दुल अंसारा बानू. इट्स ए लवली मॉर्निंग आपकी तरफ से मिस्टर टोनी फ्रॉम होशबा पूरे परिवार के नाम. और आज आप कहते हैं कि कॉन्कर एंगर थ्रू जेंटलनेस, अनकाइंडनेस थ्रू काइंडनेस, ग्रीड through generosity and falsehood by truth. Simple words, लेकिन उनका impact जो है बड़ा है. तो बस अपने गुस्से पर आप control कीजिएगा. Be kind और जितना हो सके सबका भला करते रहे. No greed, no लालच. Be generous and सच का रास्ता आप हमेशा पकड़ते रहे. भले ही कितने कांटे क्यों ना हो लेकिन उसमें आपको सेटिस्फैक्शन के साथ साथ आपके जो फल हैं वो हमेशा मीठे रहेंगे. नमस्ते आपको जी. साधना एंड मुकेश लाल माची से और आप सबके नाम.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: Bajkar 24 Pinat. Thank you so much. Hamare ham safar banne ke liye. सैकात नफ नफ दूस नफ कार पर आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच. राम राम आपको भाई सूरज शर्मा सजादा एंड परिवार खियोली से. इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू प्रिंसेस सृष्टि. आज स्वीट 16 की हो गई है. ब्लेसिंग्स मम्मा पापा भाई रिधेश गोश्नवा से सब परिवार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. अरे बाप रे बाप इतना लंबा मैसेज. विदुषा कुसा सिंह लेस्योरोज सेबास्टोपोल से आज आपकी शादी की 7th वेडिंग यानी कि एनिवर्सरी है तो आपको हबीब विमल को ढेर सारी शुभकामनाएं. जोड़ी सलामत रहे एंड ऑलरेडी एट वर्क फिलिंग स्टेशन में मोताब्लॉश में तो बों को गाज एंड बस ऐसे ही आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे, सुख दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ ही बने रहे.

529 बो कुराज चौदोज एट वर्क या फिर आप घर से निकल रही हैं, जो बीत गया सो बीत गया, अब नया पन्ना खुल चुका है, इसमें आप कुछ नया लिखने की पूरी कोशिश करें लेकिन शिद्दत से, मेहनत से। किशोर कुमार एंड आशा भोसले की आवाज़ों में डार्लिंग फिल्म का गाना है, चलिए एंजॉय कीजिएगा। आपके मैसेजेस ऑन 5499 1294 एंड ऑफकोर्स बस थोड़ी देर में इट्स गोना बी योर हॉरोस्कोप, सो डार्लिंग डार्लिंग फिल्म का ये सदाबहार गाना आप एंजॉय कीजिए।

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musti.
2: भाई जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अगर हाँ अगर हम अपनी सोच को सही रखें, अच्छे रखें और बस जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. 5:38 थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप, महेंद्र कपूर और बाकी कलाकारों की आवाज़ में उपकार फिल्म का ये सदाबहार गाना. मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और हीरे मोती तो आप ही हैं, हम सब हैं जो प्यार से एक साथ जीते हैं, अमन के साथ, भाईचारे के साथ. योर मैसेजेस हेमलता भजन आप हो फ्रॉम पोएटो पीमा, विशिंग ऑल अ लवली डे अहेड. जब भाई विक्रम बीपन, बहने सुदम साथ में हैं, बोईजनत सुभग दामगी मेघास गंगू मामी हैं, यानी कि सब परिवार, मामी यशवंती भजन परिवार. बस आपका दिन एकदम शुभ मंगलमय हो यही कामना करती है माई डियर. ट्यूनिंग टू रेडियो मस्ती कुमार एंड देवीचंद फैमिली, थैंक यू. नीमा जीवन फ्रॉम मोदारबेया और गाने सुन रही हैं, थैंक यू सो मच. अगर आप खुश तो हम भी खुश.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: चलिए जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा.
1: Your daily horoscope. RM2. Radio Musti.
3: Aries, मेष राशि.
2: तो आज सितारे आपको एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि अपनी सेहत को प्राथमिकता दें, राइन यानी कि प्रायोरिटी दें. यदि किसी पुरानी परेशानी को आपने नज़रअंदाज कर रखा है तो वो दोबारा ध्यान मांग सकते हैं. अच्छी बात यह है कि भाई बहनों का सहयोग, पूरे परिवार का सहयोग आपके लिए किसी मजबूत सहारे की तरह रहेगा और उनके साथ मिलकर कई अटके हुए काम भी आगे बढ़ सकते हैं.
3: टॉरस, वृषभ राशि.
2: Well, आज आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी मित्र बन सकती है और सबसे बड़ी चुनौती भी. इसलिए बोलने से पहले एक बार, एटलीस्ट एक बार सोच लेना समझदारी होगी. छोटी सी बात को तूल देने में आप सक्षम रहेंगे, लेकिन इससे बचना होगा. हाँ, क्योंकि अनावश्यक विवाद आपके समय और ऊर्जा यानी कि एनर्जी दोनों को प्रभावित कर सकती है. खर्चों पर नियंत्रण रखना आज बेहद ही आवश्यक है.
3: जेमिनी, मिथुन राशि.
2: वेल, आज का दिन आपके लिए सुखद आशयों की सौगात लेकर आ सकता है. किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होने के योग है और ये मुलाकात कई यादगार पर वापस ले आएंगी. स्टूडेंट्स को पढ़ाई में थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़

0: सकता है, लेकिन निरंतर प्रयास उन्हें सफल की ओर ले जाएंगे।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: आज आपको धैर्य यानी कि पेशेंस के साथ अपने सबसे जो है आपका सबसे बड़ा हथियार बना सकती हैं। क्रोध में लिया गया एक छोटा सा डिसीजन भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। जीवन साथी की सलाह को हल्के में ना लें, क्योंकि उनके शब्दों में आपके लिए कोई महत्वपूर्ण संकेत छिपा हो सकता है। फैमिली के साथ किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा और घर का वातावरण आनंद और उत्साह से भर जाएगा।
1: लियो सिंह राशि,
0: राइट, आज का दिन दोस्तों के साथ बिताए गए खुशनुमा पलों से भर सकता है। हंसी मजाक और पुरानी यादों का सिलसिला आपके मन को हल्का और प्रसन्न बनाएगा, लेकिन उस खुशी के बीच अपने जरूरी कार्यों को नजरअंदाज ना करें। आय बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: वेल, आज आपके भीतर छिपी रचनात्मकता क्रिएटिविटी पूरी चमक के साथ सामने आ सकती है। नए विचार और नई योजनाएं आपके काम को नई दिशा देने में मदद करेंगी। किसी अनुभवी सहकर्मी की सलाह भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। वैसे समाज में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस मानी कि आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: आज न वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिस कार्य को लेकर आप लंबे समय से चिंतित थे, उसमें प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक मामलों में आज थोड़ा सतर्क रहना बेहतर रहेगा और किसी को उधार देने से बचना समझदारी होगी। ये लव लाइफ में भी कोई पुराना अध्याय अचानक सामने आ सकता है।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज जीवन में आराम और सुविधाओं का स्तर बढ़ता हुआ महसूस हो सकता है। पिछले दिनों की चिंताएं अब धीरे धीरे कम होती दिखाई देंगी और मन हल्का महसूस करेगा। परिवार के बड़े सदस्य कोई ऐसी सलाह दे सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए बेहद मूल्यवान साबित हो। यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होने के भी योग है।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज आपके प्रयास रंग लाते हुए दिखाई देंगे। यदि कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चने थी तो अब उनके दूर होने की संभावना बन रही है। आपकी मेहनत और समर्पण आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। वैसे पुराने लेन देन को निपटाने के लिए भी समय एकदम अनुकूल है। बस स्वास्थ्य में सुधार के संकेत है और लंबे समय से चली आ रही कोई परेशानी कम भी हो सकती है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज आर्थिक मामलों में सितारे आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। धन और समृद्धि में वृद्धि के संकेत हैं और व्यापार में भी लाभ की संभावना बनी हुई है। किसी यात्रा या मुलाकात के दौरान मिली जानकारी आगे चलकर आपके लिए सफलता का द्वार खोल सकती है। जस्ट नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा और इनमें से कुछ लोग आपके कारोबार को नई दिशा देने में मददगार साबित भी हो सकते हैं।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: ऑलराइट, आज का दिन सुकून और रिश्तों में मधुरता लेकर आ सकता है। यह जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर दूरी और मतभेद अगर हो तो वो दूर होता दिखाई भी दे सकता है। आपका मन हल्का रहेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने या समय बिताने की योजना भी बन सकती है। हालांकि बड़ों की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है और किसी महत्वपूर्ण विषय पर पिताजी माताजी की सलाह आपके लिए बेहद उपयोगी साबित भी हो सकती है।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज आपका ध्यान अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने पर अधिक रहेगा और इस कारण खर्च भी बढ़ सकता है। आपका स्वभाव कभी कभी जल्द प्रतिक्रिया देने वाला हो सकता है। दैट्स व्हाई परिवार के साथ बातचीत के समय संयम बनाए रखें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से बचें, क्योंकि धैर्य ही आज आपकी सफलता की कुंजी है। निजी और महत्वपूर्ण बातें अपनी तक ही सीमित रखना आज आपके लिए बेहतर रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Masti.
2: इसमें कोई दो रहा नहीं है कि आप ही पल पल हमारे दिल के पास और करीब रहते हैं एंड अच्छे बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार. अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको मौजालबिया से नीमन जीवन फैमिली और बस दूतिका रखो जाना परिवार साथ देने के लिए थैंक यू सो मच.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty.
5: 6 baje hai. संध्या संक्षिप्त समाचार आपसे नमस्कार आपको आस्था
6: नमस्कार प्रथम समाचारों में स्वागत है आप सभी का ये नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो राष्ट्रसभा के कार्य आज फिर से

0: से शुरू होंगे। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा की जाएगी। संसद विशेष रूप से घरेलू हिंसा से जुड़े कानून को और मजबूत बनाने तथा पिनल कोड तथा कुछ धारकों में संशोधन से संबंधित दो बिल पर विचार करेंगे। इसके अलावा अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 की तीसरी पढ़त भी होगी, जिससे सरकार को बजट में घोषित कदमों को लागू करने का कानूनी अधिकार मिल सकेगा। इसके अलावा पीएमक्यूटी के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 13 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें से दो प्रश्न पेंशन सुधार से जुड़े होंगे। विपक्षी सांसद अद्रियन जिवाल सितंबर 2025 में गठित पेंशन सुधार विशेषज्ञ आयोग के कार्यों पर सवाल उठाएंगे। वे जानना चाहेंगे कि अंतरिम रिपोर्ट पेश किए जाने तक आयोग ने कितनी बैठकें लगाई हैं। जॉन माइक मॉटिंगेल मामले में एसएसओ एयरपोर्ट पर नशीले पदार्थ मिले शराब की दो बोतलों के साथ गिरफ्तार यूक्रेन की नागरिक मारिया पेरिसुल्किना के मुकदमे में सुनवाई कल असाजिज अदालत में जारी रही। बचाव पक्ष ने दिवंगत जॉन माइक मॉटिंगेल के बयान अदालत में पेश किए जाने की मांग की। इस बीच मुख्य जांच अधिकारी से पूछताछ अदालत के फैसले तक स्थगित कर दी गई है। मामले की अगली सुनवाई आज होगी। जर्मनी में माताओं और बच्चों के केंद्र में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी 3 महीने की बेटी की अभिरक्षा को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद के कारण केंद्र में पहुंचा था। फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। पाराग्वे ने निर्धारित समय और अतिरिक्त समय तक 1-1 की बराबरी के बाद पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और अब चले जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की से सामान्य हवा की लहरों का असर रहेगा। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान विशेषकर ऊंचाइयों पर कुछ कुछ वर्षा हो सकती है और बादल भी घिरे रहेंगे। अन्य इलाकों में धूप खिली रहेगी। शाम को मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और न्यूनतम अन्य इलाकों पर 18 से 20, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। दक्षिण पूर्व की दिशा से हवा बहेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दक्षिण और पश्चिम के समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:46 पर, सूर्यास्त 5:41 पर होगा।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services. TV contents such as films, TV serials, local productions amongst others. TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
3: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
4: Radio Musty.

0: बस अपने आप का ख्याल रखिएगा और इन गानों के जरिए हम आपके दिल को सहला रहे हैं।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio.

0: हम तो कहते हैं सीधे ही चलो भाई वरना वेदिता की मंजुलिका भी आ जाएगी.
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.

बस दामिनी भी हमारे साथ है, चांद तारे भी, और आप भी ब्रिंदा बंगारू फ्रॉम हुसबैल, नेफ्यू हरिवेश बंगारू, उनका बर्थडे है, ब्लेस अप, बेस्ट विशेस टू हिम एंड सब परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी रेखा अंश पो बोझो से आपके पूरे परिवार के लिए माय डियर, एंड जितने भी लिसनर्स हैं बस 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन।

0: नमस्कार, 6:30 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्यसभा की कार्यवाही आज फिर से शुरू, बैठक में घरेलू हिंसा और पेनल कोड में संशोधन से जुड़े दो महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा होगी। इसके अलावा अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 की तीसरी पढ़त भी की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 13 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें पेंशन सुधार, एमर्शस सेफ सिटी और ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक जैसे मुद्दे प्रमुख होंगे। वक्फ एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा जारी। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता को और मजबूत बनाना है। जॉन मिक मॉर्टिंगेल मामले में यूक्रेन की नागरिक मारिया पेरेसोल्किना के मुकदमे की सुनवाई जारी। अदालत ने मामले की सुनवाई अगली आज के लिए निर्धारित की है। जर्मनी में माताओं और बच्चों के केंद्र में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर हुआ है। 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी पेनल्टी शूटआउट में पराग्वे से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ही ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। राज्यसभा के कार्य आज फिर से शुरू होंगे। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। सांसद विशेष रूप से घरेलू हिंसा से जुड़े कानून को और मजबूत बनाने तथा पेनल कोड यानी दंड संहिता की कुछ धाराओं में संशोधन से संबंधित 2 विधेयकों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 की तीसरी पढ़त भी होगी, जिससे सरकार को बजट में घोषित कदमों को लागू करने का कानूनी अधिकार मिल पाएगा। विधि मासी बोरल।
1: क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल आधिकारिक तौर पर राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ये विधेयक दंड संहिता में कई संशोधन करने का प्रावधान करता है, ताकि इसे डोमेस्टिक अब्यूज बिल के नए प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके। विशेष रूप से ये प्रस्तावित करता है कि बलात्कार के आरोप में मुकदमा झेल रहा कोई भी व्यक्ति अब बचाव के तौर पर पीड़िता के साथ अपने विवाह, चाहे वो नागरिक हो या धार्मिक, का हवाला नहीं दे सकेगा। ये विधेयक कुछ अपराधों, विशेष रूप से बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, गैर इरादतन हत्या और गैर इरादतन हत्या के प्रयास के लिए सजा को सख्त करने का भी प्रावधान करता है, जब ये अपराध घरेलू हिंसा के संदर्भ में किए जाते हैं। इसके बाद सांसद अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 की तीसरी पढ़त को पूरा करेंगे, जो इसके अंतिम रूप से अपनाए जाने से पहले का आखिरी चरण है। ये विधेयक सरकार को 2026-2027 के बजट में नियोजित खर्चों को वित्त पोषित करने के लिए कानूनी अनुमति देगा, जिससे कंसोलिडेटेड फंड से आवश्यक धनराशि निकालने की सुविधा मिलेगी। कार्यसूची में शामिल एक और प्रमुख विषय डोमेस्टिक अब्यूज बिल है, जिस पर सेकंड रीडिंग में विचार किया जाएगा। बहस इस विधेयक के सिद्धांतों पर केंद्रित होगी, जो प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जगह लेगा। इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा के मामले में कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाना है। ये विधेयक हिंसा की परिभाषा का विस्तार करता है, जिसमें अब मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौन हिंसा भी शामिल है। ये पीड़ितों के लिए सुरक्षा उपायों को और मजबूत करता है, कानून के दायरे को पूर्व जीवन साथी तक बढ़ाता है और पीड़ितों की देखभाल के लिए जिम्मेदार विभिन्न संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करता है। साथ ही ये रोकथाम और हिंसा करने वालों की जवाबदेही तय करने पर अधिक जोर देता है।
0: इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 13 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें से 2 प्रश्न पेंशन सुधार से जुड़े होंगे। विपक्षी सांसद अद्रियन जुवाल सितंबर 2025 में गठित पेंशन सुधार विशेषज्ञ आयोग के कार्यों पर सवाल उठाएंगे। वे जानना चाहेंगे कि अंतरिम रिपोर्ट पेश किए जाने तक आयोग ने कितनी बैठकें की हैं। अपने दूसरे प्रश्न में वे स्टीयरिंग कमेटी ऑन पेंशन रिफॉर्म के कार्यों पर भी जानकारी मांगेंगे। इसके अलावा एमोरस हवाई अड्डे, ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक और सेफ सिटी परियोजना से जुड़े मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री से सवाल किए जाएंगे। वक्फ विकास के कार्यों में लगाई जाती है सामाजिक विकास और बजट 2026-2027 में 85 वर्षों के बाद वक्फ एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत करना है। इसी विषय पर कल एमबीसी 1 और एमबीसी 7 पर प्रसारित विशेष कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने कहा कि इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य वक्फ के प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाना है। मंत्री को सुनती है।
2: Maintenant, des pour des affaires plus structurées. Donc, c'est la bonne gouvernance. Et pour moi, quand ils me disent des affaires, franchement, moi, un musulman, comment je suis capable d'accepter qu'il y ait un kinmo, qui se dit bien le wakaf, et qui demain, un mutawali, qui peut-être pas famille au libre, après 50 ans, 60 ans, 75 ans, vini, il peut prendre leurs enceintes.

0: il permet dans sa wakaf là. Comment nous capable accepter qui dans une institution aussi pieuse qui wakaf nous capable permettre leurs en salle. Donc ça la loi là, il met une obligation le mutawali assure lui qui pénal la loi, pénal aucun leurs en salle qui passe dans le wakaf et il met une obligation le the board of wakaf commissioners assure lui qui pas pour une leurs en salle qui ban wakaf armé pas pour utiliser pour blanchir l'argent, wakaf armé pas pour utiliser pour finance ban activité illégale.
1: Board of Wakf Commissioners के सचिव और चीफ एग्जीक्यूटिव नयाज बंधन ने बताया कि मॉरिशस में इस समय 539 वक्फ पंजीकृत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ तीन प्रकार के होते हैं, धार्मिक, परोपकारी और पारिवारिक। वहीं आवास एवं भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा कि सभी पक्षों से व्यापारिक विचार विमर्श किया जाएगा ताकि सभी सुझावों पर ध्यान दिया जा सके और लोगों की चिंताओं का समाधान हो। इसी सिलसिले में बुधवार को उनके कार्यालय में एक बैठक भी आयोजित की गई। ऊर्जा और सार्वजनिक सेवाओं के मंत्री पैट्रिक आसियावादेन कल ग्रैंड सिटी कार्यक्रम के अतिथि थे। उन्होंने बजट 2026-2027 में घोषित फोटोवोल्टाइक पैनल्स लगाने पर 25% सब्सिडी का स्वागत किया। उन्होंने ये भी कहा कि CWA का बोर्ड अगस्त से व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पानी के शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, हालांकि इसका असर घरेलू उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। मंत्री को सुनते हैं विवरण विधि मासिबोरन।
2: डिसीजन की ला CWR पे रिफ्लेक्सी ले बोर्ड पे रिफ्लेक्सी सी की ऑगमेंटेशन टैरिफेयर पुर सर्टेन कैटेगरी बिजन पॉइंट फी नू पा कैपेबल टूस ले सेक्टर डोमेस्टिक ला पॉपुलेशन जनरल
3: बन मेनाज बन फॉयर
2: बन मोइनाज बन फॉयर नू पा कैपेबल टूस ऑगमेंटेशन पुर ज़ोट मेम सी दे ले लाबा ली पा पॉसिबल की नू टूस ज़ोट पास की नू पा एनकोर डन ज़ोट एन डिस्ट्रीब्यूशन raisonnable.
3: Ceci dit, vous considérez pas raisonnable.
2: C'est-à-dire qu'il m'a besoin capable de gagner de l'eau au moins 7 temps, 8 temps par jour, pour être rempli.
4: CWA और बोर्ड जिस फैसले पर विचार कर रहे हैं वो ये कि कुछ कैटेगरियों के लिए CWA के बिल में वृद्धि होनी चाहिए। घरेलू सेक्टर इससे अछूता है, उनके लिए वृद्धि लागू नहीं होती क्योंकि उन्हें 24 घंटे पानी नहीं मिलता है। कमर्शियल सेक्टर, औद्योगिक सेक्टर, स्मॉल सिटीज, होटल, वो कंपनी जो पानी बेचते हैं उनके लिए वृद्धि लागू होगी। एक बोतल पानी जो आप खरीदते हैं ये पानी 3 सेंट्स है और आप इसे 30 रुपए में बेच रहे हैं। CWA का बोर्ड इन सब पर अध्ययन करेगा और शायद अगस्त महीने तक एक फैसला लिया जाएगा या शायद देर से देर सितंबर महीने तक। इन सेक्टरों में पानी के बिल में वृद्धि निश्चित और जरूरी है ताकि CWA अपनी प्रणाली को बेहतर बना सके। प्रधानमंत्री ने ग्रांट दिए हैं, अगर आप अपने घर के छत पर फोटोवोल्टाइक स्थापित करना चाहते हैं तो सरकार आपको 75,000 रुपए का ग्रांट दे रही है। अगर इसकी लागत 2 लाख रुपए है और DPM में आपको 1,25,000 रुपए का लोन मिल सकता है। इसके अलावा 75,000 रुपए का ग्रांट भी मिलेगा। इससे आपको 4 किलोवाट का फोटोवोल्टाइक मिलेगा, आपके बिजली का बिल कम होगा। 5 सालों में आप DBM को लोन चुका देंगे तब बिजली का बिल आपका हो जाता है। इससे न केवल मॉरिशन परिवारों की मदद होती है बल्कि CEB की भी मदद हो जाती है।
2: 125,000 rupees plus 75,000 rupees de grant, il fait au 200 000 ou gagne panneau de 4 kilowatts ou météo ou la case ou facture électricité. Une baissée et en même temps quand on peut payer DBM ça veut dire dans 5 ans on finit payer DBM dépend qu'il quand c'était où l'on était après on facture électricité ça vient pour vous n'est pas existe la famille mauricienne ça hein CIB mon explique CIB ça mon dit CIB qui au départ quand tu gagnes fiche qui est bien rempli ou monsieur Naiken ou PL CIB ou peut envie mettre un panneau et mon gagne fiche que CIB il a 17 demandes ou bien données
3: beaucoup du monde d'ailleurs c'est compliqué.
2: Mon appel CIB, mon dieu que ça, moi, je ne peux pas les comprendre ça du tout. Moi, j'ai au minimum 4 affaires au demander.
1: ये बजट के प्रमुख कदमों में से एक है जिसका उद्देश्य मॉरिशस के नागरिकों को ऊर्जा परिवर्तन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन स्कीम के तहत पात्र परिवार अधिग्रहण लागत का 25% सब्सिडी के रूप में प्राप्त कर सकेंगे जो प्रति इंस्टॉलेशन 75,000 रुपए तक सीमित होगा। पात्रता मापदंड इस सप्ताह के अंत तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। लगभग 3,600 परिवार इस सहायता परियोजना से लाभान्वित होंगी। माधवी जगन्नाथ, आदित्य अवतार।
5: घरों की छतों पर सोलर पैनल बिठाने का प्रोग्राम इस साल एक नया आयाम ले रहा है। स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड जेनरेशन स्कीम के तहत योग्य परिवारों को पैनल खरीदने की लागत का 25% भाग सब्सिडी के तौर पर मिलेगा।

केंद्र में पहुंचा था। घटना में कई अन्य लोग घायल हुए। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और उनका कहना है कि फिलहाल जनता के लिए कोई खतरा नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। पाराग्वे ने निर्धारित समय और अतिरिक्त समय तक 1-1 की बराबरी के बाद पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ही ब्राज़ील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। पहले हाफ में पिछड़ने के बाद ब्राज़ील ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी की और इंजरी टाइम में विजयी गोल दागकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब अंतिम 16 में उसका सामना नोवे या आइवरी कोस्ट से होगा। हमारे इलाके पर हल्की से सामान्य हवा की लहरों का असर है। पूर्वानुमान है कि आज दिन के दौरान ऊंचाइयों पर रह रहकर बरसात होगी और बादल भी घिरे रहेंगे। अन्य इलाकों पर धूप खिली रहेंगी। शाम को और रात को मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। देश भर में न्यूनतम तापमान साहली इलाकों पर होगा 18 से 20, अधिकतम 26-29 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम सेंट्रल प्लाटू पर 14 से 16, अधिकतम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:46 पर, सूर्यास्त 5:41 पर होगा।

देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजल, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। कालिमाई रोड रोशनुआ में 59 ईयर्स ओल्ड की 59 साल के श्री राज मोहन दुखिया की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें राजेश के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उन्हीं के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोशनुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। बुलेल रोड लिनफाटलेन मेलरोज में 79 ईयर्स ओल्ड के ब्रिजलाल लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें हरिदेव के नाम से ज़्यादा जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके बेटे राज सिंह लक्ष्मण के मकान मेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई ब्लॉश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। रूथ जेओफ्रॉय बॉम्बू में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की सीमती गोबर्धन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें ज्ञानती के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उन्हें के मकान बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बल्कि उनकी बेटी किरण मोहिसर बोबू के मकान बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोशनुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। एवेन्यू जॉन केनेडी वाकवा में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की कुवादम्बल रामसामी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम कौपे नायक, लोग उन्हें तौचिन कीर्ति के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनके बेटे राजनैन रामसामी के मकान वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मैल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड बुबासे में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड की ईश्वंतराव महादिया की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें राजन के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे शापेल ओदों इलियनसन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मैल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। आपको याद दिला दें कि एवंत राव महादिया पहले खुदबासे कचुबोन के रहने वाले थे। लाशापेल रोड कौंजाब में 86 साल की 86 ईयर्स ओल्ड की बीबी जैतून मीरा

इंतकाल कर गई हैं। पैदाइश नाम मंदिया बक्स, उनका जनाजा आज सुबह के 10:30 बजे उनकी बेटी फयाज मिरम के मकान कौंजियाब से निकालकर दफनाने के लिए कौंजियाब का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट हॉफ पॉस 10 AM। एफटू रेजिडेंस तायाक रिविया दिस अंगीमी एटीटूल की सियान जानी अपादू की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम गुरवादू, लोग उन्हें अपा गंगा के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थ आज दिन के 2:30 बजे उनके बेटे मनोज अपादू के मकान रिविया दिजांगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुबह की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। गोल्डस्मिथ स्ट्रीट कॉम्बेनोआ पेटिट रिविया में 44 years old की नित्यानंद सिंह नायक हरी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के बल्कि गुरुवार 2 जुलाई को दिन के 2 बजे उनकी माता तारा नायक हो रही के मकान पेटिट रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन ऑन 2 जुलाई एट 1:30 PM। ब्रांच रोड लाल माथी में 69 साल की मिस पद्मावती बसावा की मृत्यु हो गई है। मिस पद्मावती बसावा की मृत्यु हो गई है, लोग उन्हें लीला के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के मकान लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालमाची की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड एल्बियो में 92 साल की 92 years old की अहिल्या काली की मृत्यु हो गई है, लोग उन्हें चंदन के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 10:30 बजे उनके बेटे सुचित दुखिया के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। रॉयल रोड पुस्तफ्लाक में 71 साल की 71 years old की धनराज बोयगो की मृत्यु हो गई है, लोग उन्हें कुमार के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन की 11 बजे उनकी पत्नी सुकमिन बोयरो के मकान रॉयल रोड पुस्तफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पुस्तफ्लाक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। डिस्पेंसरी रोड त्रियोली में 88 साल की 88 years old के राणा प्रताप ताकोरी की मृत्यु हो गई है, लोग उन्हें राणा के नाम से अधिक जानते थे। और वे पहले बैंक ऑफ मॉरिशस में मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से काम कर चुकी हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 3:45 बजे उन्हीं के मकान थ्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनी थ्रियोली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:45 PM। चमन प्रेशान नंबर 2 वाकुआ में 100 साल की 100 years old शांति सवाराम की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे प्रेमपत चमन के मकान वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। स्कूल लेन लारोजा में 91 साल के 91 years old की सिलिया सनासी जगिया की मृत्यु हो गई है, लोग उन्हें रामू के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज सुबह के 8:30 बजे उन्हीं के मकान लारोजा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माही जानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 8:30 AM। सिबरत लेन फ्लोरियाल में 73 साल की 73 years old की मारी देजीरे द्वारिका की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके पति ईश्वरलाल द्वारिका के मकान फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले ब्रियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। मारी जानी रोजबेल में 90 साल की 90 years old की धर्मावती रामदीन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम राऊ, लोग उन्हें मामा अनिल के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके बेटे सुनील रामदीन के मकान रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 PM।
रॉयल रोड मोची दामी 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की शांति बाई लक्सिमो की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम तानू, लोग उन्हें शांति के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज सुबह के 9:30 बजे उनके बेटे आत्माराम लक्सिमो के मकान मोचीदा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:09 AM। एसएसओ लेन मोताबा

मी मोताबा में 75 साल की 75 years old की पुनवासी सुकाही की मृत्यु हो गई है। पुनवासी सुकाही की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें चुकाई के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे सूरज सुकाही के मकान एसएसओ लेन मोताबा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताबा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड लाल माथी में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड की ननकेश्वरनाथ बिजादौर की मृत्यु हो गई है। ननकेश्वरनाथ बिजादौर की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें दुल के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके भाई योगेंद्रनाथ बिजादौर के मकान लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: मेरी मस्ती सुनते रहो।
1: 7:01 हुआ है।
2: कौन सी वाला मशीरा? एक फॉर्मलेन नुगेयों को बुकु प्लीज।
3: मॉर्निंग बीट।
4: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
3: A good beat for your morning show.
5: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: RM2 Radio Musti.
1: सुबह के 7:25 हुए हैं, भूलिएगा नहीं दोस्तों कि अगर आप किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी का दिन स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो उनका फोन नंबर, उनका नाम जरूर भेजें 5491-2294।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: You're listening to Radio Musti Vedita के साथ यहाँ आपका मॉर्निंग बीट है. यहाँ पर लगता है कि आज थोड़ी दिक्कत हो रही है हमें आपके मैसेज को पाने में. सो काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पर इन्होंने अपने मैसेज भेजे हैं. एंड आज बर्थडे होकर बहुत सारे लोगों ने वेडिंग एनिवर्सरी के लिए हमें मैसेज किया है. तो आज का हमारा जो बर्थडे बॉय है, बर्थडे गर्ल है, उनको हम ढूंढ रहे थे. चलो कोई बात नहीं, ये भी एक एनिवर्सरी है तो किसको विश करें.

0: रेडियो मस्ती।
1: चलो तो यहाँ पर आज विश करते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे एंड ये हैं रिवेश बंगारू, आज उनका बर्थडे है तो वृंदा की तरफ से उनको बहुत सारा प्यार है, रोजबेल्स के रहने वाले हैं और वो हमेशा खुश रहे। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, आपने एक्चुअली उनका फ़ोन नंबर डाला नहीं तो हमें उनको कॉन्टैक्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, सो थैंक यू सो मच वृंदा। चलो रिवेश को बहुत सारा प्यार है हमारी ओर से। लुलु हाइपर मार्केट की तरफ से मैं आपको बताऊँ उनको मिल रहा है एक वाउचर, जी हाँ एक वाउचर, और ये जो उनको कलेक्ट करना होगा आज नहीं तो कल एमबीसी आकर। और याद रखिए कि अगर वृंदा जी आप अपना आईडी या तो फिर अगर रिवेश काफी बड़ा है तो उनका आईडी हमको चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं कि वो कितने साल के हुए। तो चलो कोई बात नहीं, उनको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और अगले गाने के साथ हम थोड़ी देर में बढ़ने जा रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड की ओर, देखते हैं अरविंद क्या खबर लेकर आ रहे हैं हमारे लिए। तो साथ देते रहिए, ये है आपका मॉर्निंग बीट विदिता के साथ आपके अपने रेडियो मस्ती पर।
2: RM2 Radio Musti in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: And yes, you're listening to Radio Masti Vidita के साथ. A very good morning, my dear friends. सुबह के 7:40 हुए हैं. अरविंद थोड़ी देर में उपस्थित होने वाले हैं सारी खबरों के साथ. अभी फिलहाल के लिए we're gonna wish a happy wedding anniversary to Sudevi and Dharmanand Ramnoth. यह करिश्मा और अमित की तरफ से. और वहीं पे प्यारी सासुमा चंद्रा ज्योति सजना अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हैं, तो उनके लिए पूरे सजना फैमिली की ओर से, जो कि मौसलमा से दावे से हैं, विशेष भेज रहे हैं. तो चलिए इसी के साथ वी गोना कंटिन्यू विद सम गुड म्यूजिक. थोड़ी देर में बढ़ेंगे स्पोर्ट्स न्यूज़ की ओर.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: एनीस गाइस, समय हो गया है, चलिए बढ़ते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की ओर. और इधर थैंक यू सो मच विकेश हमारे साथ झूमने के लिए. कहते हैं कि क्या म्यूजिक है भाई, मजा आ गया. हाँ बिल्कुल, आपने सही पकड़ा. हम स्टूडियो में डांस कर रहे हैं लेकिन अभी हम नाचेंगे यहाँ अरविंद के साथ. जानना है ना कि अभी वर्ल्ड कप में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है. गुड मॉर्निंग अरविंद.
4: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. वर्ल्ड कप में अब नॉकआउट राउंड है और नॉकआउट राउंड में सब कुछ होता है. कहीं पर मैच ड्रॉ तो पेनाल्टी शूटआउट, तो कहीं पर अंतिम मिनट में गोल. अभी इसी समय मैच मोरक्को और नेदरलैंड्स के बीच पेनाल्टी शूटआउट. पेनाल्टी शूटआउट एक और मैच में हुआ, जर्मनी और पाराग्वे के बीच मैच में. और चार बार वर्ल्ड कप जर्मनी वर्ल्ड कप 2026 से आउट. पाराग्वे ने पेनाल्टी शूटआउट पर द नेशनल मैनचेस्टर को एलिमिनेट किया. जोर का झटका लगा जर्मनी को. रेगुलेशन टाइम और एक्स्ट्रा टाइम में मैच ड्रॉ रहा 1-1. फर्स्ट हाफ में फिर पाराग्वे 1-0 से आगे. फिर सेकंड हाफ में काई हावर्ट्स ने इक्वलाइज किया. एक्स्ट्रा टाइम में स्कोर नहीं बदला. इस वर्ल्ड कप में पहली बार के लिए पेनाल्टी शूटआउट का शिकार बना जर्मनी. काई हावर्ट्स और निक वोल्टमेड के साथ साथ जोनाथन टाह पेनाल्टी में स्कोर नहीं कर

पाए, जर्मनी आउट, पाराग्वे इन। जापान के खिलाफ ब्राजील को लगी थरथरी, पर बचाने आ गया मार्टिनेली। ब्राजील की टीम बेस्ट ऑफ 16 में पहुंची। जापान की बहादुर टीम ने 2-1 से उसे हराया। जापान की टीम की हार हुई, ब्राजील ने उसे हराया। फर्स्ट हाफ में जापान ने ब्राजील को चौंकाया 1-0 से, जापान आगे। सेकंड हाफ में काजेमीरो ने इक्वलाइज किया, फिर आस

0: ब्राजील को जीत दिलाई इंजुरी टाइम में 96 मिनट गोल और ब्राजील बेस्ट ऑफ 16 में जापान के लिए वर्ल्ड कप का सफर का दी एंड। आज के मैच रात के 9 बजे आइवोरी कोस्ट वर्सेस नॉर्वे और 1 बजे फ्रांस वर्सेस स्वीडन, इन पर ज्यादा जानकारियां अभी थोड़ी देर बाद आपको देंगे। मैनचेस्टर सिटी का नया बॉस आ गया, पेप ग्वार्डियोला के स्थान पर एन्जो मारिस्का को साइन किया गया। मारिस्का पहले चेल्सी में था और अपने कॉन्ट्रैक्ट के बीच में चेल्सी को छोड़ गया था। अब कॉम्पेंसेशन के रूप में सिटी और मारिस्का चेल्सी को लगभग 17 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देंगे। मारिस्का ने चेल्सी से माफी मांगी और अब उसे कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। आर्सेनल ने बोर्नमुथ के एलेक्स स्कॉट के लिए प्रस्ताव भेजा है पर बोर्नमुथ ने इनकार किया, नॉट फॉर सेल। सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, टोटनहम हॉटस्पर और चेल्सी भी इस मिडफील्डर के पीछे हैं। इधर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की अब शिकागो फायर टीम के लिए खेलेगा। टेनिस, विंबलडन ओपन में डिफेंडिंग चैंपियन और वर्ल्ड नंबर वन यानिक सिना की एंट्री आसान नहीं रही। बियोमिया केर्मानोविच को हराने में 5 सेट लगे। सबालेंका, जोकोविच, ओस्तापेंको, अंद्रीवा, मेदवेदेव, पेगुला, जेंग, ओगा अलियासिमे, कोको गोफ, जोदा, हुरकास, ओसाका जीत पाए। आज स्वातेक खेलेगी टाउनसेंड के खिलाफ, ब्लॉक्स, विरेव, सेरेना विलियम्स जॉइंट। क्रिकेट में 2028 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट होगा। वीमेन्स क्रिकेट इवेंट में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ग्रेट ब्रिटेन होंगी। मेंस इवेंट के लिए 4 स्पोर्ट्स होंगे, ये आईसीसी T20 रैंकिंग्स के आधार पर दिए जाएंगे। अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशियाना की हाईएस्ट रैंक टीम्स क्वालिफाई होंगी। सो वर्ल्ड कप जारी है, अभी थोड़ी देर बाद आपको फाइनल रिजल्ट देंगे। मोरक्को और नेदरलैंड्स के बीच जो मैच है, पेनाल्टी पर ये मैच चल रही है और आज के मैच पर भी आपको जानकारी देंगे। विल मीट अगेन एट 8:30 फॉर द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप इन वर्ल्ड कप मैगजीन। टेक केयर, बाय बाय।
1: शार्विन, टेक केयर, मिलते हैं थोड़ी देर में।
2: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो, टाइल्स 30x30, मेगा डील लो टाइल्स 60x60, सीपीएस सेल्स लो ग्रानाइट क्वार्ट्ज, प्री कासे लो लावो, ला लिनिया मॉडर्न प्री सोक।

नमस्ते, सुना भोजपुरी में समाचार। आज फिर से राष्ट्रसभा की कार्य जारी रही। आज की बैठक में कई को महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हुई। सांसद लोग घरेलू हिंसा से जुड़ल कानून

0: कानून के और ही मजबूत बना हुई और ये पैनल कोड के कुछ धारा में बदलाव से जुड़ल दूगो बिल पर विचार करियन जा एकर एकरा अलावा अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 के तीसरा पढ़त भी होई जकरा बाद बजट में घोषित कदम लागू करे के कानूनी रास्ता साफ हो जाए। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 13 गो सवाल पूछल जाए ई में से 2 गो सवाल पेंशन सुधार से जुड़ल रही। विपक्षी सांसद आद्रियन जीवाल पेंशन सुधार विशेषज्ञ आयोग के कामकाज पर सवाल उठायन ऊ ई भी जनल चाहियन कि अंतरिम रिपोर्ट देवे से आगे आयोग कितना बैठक लगाए लेबा। एकरा अलावा स्टीयरिंग कमिटी ऑन पेंशन रिफॉर्म एमर्शस हवाई अड्डा ऑपरेशन स्ट्राइक और सेफ सिटी परियोजना पर भी सवाल पूछल जाए। वक्फ एक्ट में 85 बरिस बाद बदलाव के प्रस्ताव रखल गल बा। सरकार की कहना बाकी ई बदलाव से वक्फ संपत्ति के प्रबंधन और पारदर्शी और प्रभावी बनावल जाए। ई विषय पर ही एमबीसी 1 और एमबीसी 7 पर विशेष कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा भइल। बोर्ड ऑफ वक्फ कमिश्नर्स के सचिव और चीफ एग्जीक्यूटिव नयाज बंधन बोलन की मॉरिशस में अभी 539 वक्फ पंजीकृत बा। वो कहलन की वक्फ तीन तरह के होला, धार्मिक, परोपकारी और पारिवारिक। उधर मंत्री शकील मोहम्मद कहलन की सभी पक्ष से सलाह मशवरा करल जाए। इस सिलसिला में बुधवार के उनकर दफ्तर में बैठक हुई। ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा मंत्री पत्रिक अस्यवादन कौचित्र कार्यक्रम में बजट 2026-2027 में घोषित फोटोवोल्टाइक पैनल्स पर 25% सब्सिडी के स्वागत करलन। वो ये भी कहलन कि CWA के बोर्ड अगस्त से पारिवारिक, व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र खातिर पानी के शुल्क बढ़ावे पर ही काम करत बा। हालांकि घर परिवार पर ही बढ़ोतरी के असर नहीं पड़ी। जॉन मिक मॉर्टिंगिल मामला में SSO हवाई अड्डा पर नशीला पदार्थ मिलल शराब की 2 बोतल के साथ गिरफ्तार यूक्रेन की नागरिक मारिया पेरिसोल्किना के मुकदमा की सुनवाई असाइजेस अदालत में जारी रहल। बचाव पक्ष दिवंगत जॉन मिक मॉर्टिंगिल के बयान अदालत में पेश करे की मांग कर ले बा। मुख्य जांच अधिकारी से पूछताछ अदालत के फैसला आवेली रोक देवल गल बा। अगला सुनवाई आज हुई। दूसर देश के खबर में जर्मनी में मां और इलाका लोग के एगो केंद्र में गोलीबारी में 6 जना के मौत हो गल बा। पुलिस के अनुसार आरोपी अपन 3 महीना की बेटी के देखभाल से जुड़ल पारिवारिक विवाद के चलते ई केंद्र में पहुंचल रहल। कई गो लोग घायल भी हवन जा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर देखे की मिलल। 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गल बा। पाराग्वे निर्धारित समय और अतिरिक्त समय में 1-1 के बराबरी के बाद पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गल बा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ही ब्राजील के रोमांचक मुकाबला में जापान की 2-1 से हरा के अंतिम 16 में पहुंच गल बा। पहला हाफ में पिछड़े के बाद ब्राजील दूसरा हाफ में जोरदार वापसी करलक और इंजरी टाइम में विजयी गोल करके मुकाबला अपन नाम कर दिलक। अब ओकर मुकाबला नॉर्वे या आइवरी कोस्ट से हुई। तो ये रहल हमनी के भोजपुरी में समाचार। हमनी के सुन ल जा। धन्यवाद।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: La petite, ils avaient tout sensé. Mouti time avec Formland.
3: On aime chez là, mais petit déjeuner.
2: Asté, et nos céréales à boire Formland Family Céréales. Tac, tac, tac, nos petits déjeuners de Paris.
3: Ah, ben oui, madame Sheila, où tout zoom bien ce mot.
2: Mais normal, et quand vous sortez du travail, ben appli réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Formland.
3: Où fais-moi faire?
2: Asté avec Formland Hot Chocolate, l'avion complice ta mam.
3: Si à tout qui s'agose pour les Sengu, passez!
2: Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand.
3: Asté avec Formland, nous gagnons encore beaucoup plus.
2: Formland, ça même nous, Smart Choice.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: जी भटभटवा में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो, सब ठीक ठाक तो चल रहा है और ज्यादा जोर से चलाने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज स्पीड लिमिट पे ध्यान दीजिए। हाँ जी, सुबह के 8:10 हुए हैं, आज है 30th of June। देखो, जून को बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया है। चलो, एक खूबसूरत याद बनाने का टाइम हो गया है और बस ये महीना 2 दिन का मेहमान है। चलिए, इसका जितना हम हो सके फायदा उठाते हैं, इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं।

0: और अभी अभी हमारी बात हो रही थी अरविंद से, अभी चक्कर ही काट रहा था बेचारा, भागता कभी इधर भागता कभी उधर, भागते भागते भागते आया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला कि मोरक्को ने नेदरलैंड्स को हरा दिया। मैंने कहा कैसे? बोला पेनाल्टीज पे। फिर उसके बाद फिर गायब हो गया। चलो उनको भी बुलाएंगे 8:30 बजे। फिलहाल आप लोग हमारे साथ हैं, अच्छा लगा। आप लोग मत भागिएगा, मैं आपको बताती हूँ कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। मैं क्यों बताऊँ, आस्था है, आस्था बताएगी। चलो उनका स्वागत करते हैं, जानते हैं कि आज पूरा दिन मौसम कैसा रहने वाला है।
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: हमारे इलाके पर हल्की सी सामान्य हवा की लहरों का असर रहेगा। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान विशेषकर ऊंचाइयों पर कुछ कुछ वर्षा हो सकती है और बादल भी घिरे रहेंगे। अन्य इलाकों में धूप खिली रहेगी। शाम को मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और न्यूनतम अन्य इलाकों पर 18 से 20, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। दक्षिण पूर्व की दिशा से हवा बहेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दक्षिण और पश्चिम के समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:46 पर, सूर्यास्त 5:41 पर होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: Fin de mois. Et si on faisait les choses autrement? Du 26 juin au 9 juillet, chez Winners, retrouvez les grandes marques que vous aimez à des prix qui font vraiment du bien. Café, produits du quotidien, entretien, vos essentiels sont là, mais moins chers. Profitez-en pour faire le plein de bonnes affaires pour toute la famille. Pas oublier, Excan to pay te gagne plus points WIV.
5: On est tous Winners!
1: RM2, Radio Musti.

0: avant tes défis de longs shifts. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: दोस्तों, पैसा इंसान से बनता है, इंसान पैसों से नहीं। इंसान आपका पैसा छीन सकता है, आपकी चीज़ें भी ले सकता है, लेकिन आपकी खुशी और सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ तभी छीन सकता है जब आप खुद उसे देने का फैसला करते हो। पैसे का नुकसान दोबारा पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव सोच संभाल कर रखते हो तो हर हार के बाद भी जीत की नई शुरुआत कर सकते हो। असली दौलत बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि अपने आप पर भरोसा और अंदर की खुशी है। जो इंसान अपनी स्माइल और कॉन्फिडेंस को संभाल कर रखता है उसे ज़िंदगी की मुश्किलें भी हरा नहीं सकती। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुशी को कभी किसी के हवाले मत करो। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है।
0: Commence par une bonne décision. Nescafé.

guys. Don't forget to send me your messages on 549 and 1294. नेक्स्ट गाना विश्वजीत गोहिराम के लिए जो रहते हैं और जॉन से आज उनका बर्थडे है उनकी दीदी सीता शोभा मीरा विश्वानी सत्यम माया और भाई कुमार एंड ऋषि की तरफ से हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी बर्थडे टू ब्रदर प्रीतम ऑफ कापमालोगे फ्रॉम ज्योति प्रीति दिव्या मम जयंती एंड निफ्यू लवेश

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलो भाई, इन्होंने अंग्रेजी में टैटू बनाया है और हमने हिंदी में गोदना बनाया है, नहीं हमने मेहंदी लगाया है। सुबह के 8:30 बज गए हैं और थोड़ी देर में अरविंद आ रहे हैं लेटेस्ट खबरों के साथ कंसर्निंग द वर्ल्ड कप। और अभी क्या है कि हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो डांस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बड़ा मज़ा आ रहा है, गाने बड़े कमाल के हैं, हम डांस कर रहे हैं। और

0: हमारे दोस्तों में काफी सारे हैं, चलिए उनको भी हेलो बोल देते हैं कौन कौन हमारे साथ है, हमें सुन रहे हैं। सो नेक्स्ट गाना जो होगा वो हम दीक्षिता किस्तु के नाम डेडिकेट करेंगे, आज उनका बर्थडे है। सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपको। एंड यहाँ पर निशा और पापा नीरज, ओके मामा निशा पापा नीरज की 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, सो उनको बहुत सारा प्यार है एंड मेनी मोर इयर्स ऑफ टुगेदरनेस फ्रॉम यश, निशित रॉय, वैष्णवी, परिणीता, कृष्णा, युधिष्ठिर, माँ विदुला, ब्रदर ऋषि, साथ में है आशदा एंड जमंगर फैमिली एंड गति फैमिली फ्रॉम कोकायू। और इसी के साथ बिग हेलो टू ऑल आवर ड्राइवर्स बैंड की तरफ से, उनके MBC के जितने भी ड्राइवर्स हैं वो सुनते रहते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल। चलिए इसी के साथ हमारे दोस्त रितेश बबुआ, कैसन हो, कहते हैं भोजपुरी गाने चलते हैं तो बड़ा मजा आता है इनको। हाँ हाँ, उनको एक गाना भी पसंद है, चिकनी चिकनी। एक बार हम लोग डांस कर रहे थे तो मैंने बोला हुक स्टेप्स करके दिखाओ, तो उसने कोशिश की करने की, बोला बड़ा खतरनाक है भाई, उसका तो बीच में नागिन डांस भी निकल आया। हाँ, अपने में उलझ के रह गया बेचारा। कोई बात नहीं बेटा, आप ऐसा करो स्लो गाने में डांस किया करो, मुश्किल नहीं होगी।
1: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चिल करो, दिल से बॉलीवुड रेडियो मस्टी।

0: वैसे तो इस गाने का टाइटल होना चाहिए कि आ बैल मुझे मार या पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसको पता है प्यार करेगा बर्बाद होगा लेकिन फिर भी करेगा। वाह मेरे दोस्त वाह, कोई बात नहीं। चलो इसी के साथ अभी समय हो गया है, मिलते हैं ना अरविंद से।
1: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
2: Get ready for the biggest World Cup ever.
3: 2026 FIFA World Cup.
2: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
3: रेडियो मस्ती के साथ
2: वर्ल्ड कप मैगजीन।
0: यस यस लेट्स गो अरविंद आ गए, चलिए उनसे मिलते हैं। अरविंद,
4: स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन, कनाडा के बाद ब्राजील, पाराग्वे और मोरक्को लास्ट 16 में पहुंचे। अभी से कुछ समय पहले पेनाल्टी पर मोरक्को ने नेदरलैंड्स को हराया। मैच 1-1 पर पूरा हुआ। पेनाल्टी शूटआउट में क्लाइवर्ट, टिम्बर और समरविल स्कोर नहीं कर पाए। साइबागी ने विनिंग पेनाल्टी ली। बेस्ट ऑफ 16 में मोरक्को का मुकाबला अब कनाडा से होगा। इस वर्ल्ड कप का पहला झटका, जोर का झटका जर्मनी को लगा। पेनाल्टी पर पाराग्वे ने द नेशनल मानचार्ट को एलिमिनेट किया। ब्राजील बाल बाल बच्चा, इंजुरी टाइम में जाकर मार्टिनेली ने ब्राजील को 2-1 से जीत दिलाई। फर्स्ट हाफ में जापान आगे था, फिर सेकंड हाफ में काजेमीरो ने इक्वलाइज किया। मास्टरमाइंड कार्लो अंसेलोटी ने सब्स्टिट्यूशन की और ब्राजील जीत गया 2-1 से। इंग्लैंड की टीम पेनाल्टी प्रैक्टिस पर बहुत काम कर रही है। कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के खिलाफ मैच है कल, पर टोमास टुरेल कोई चांस नहीं लेना चाहता। पेनाल्टी शूट आउट प्रैक्टिस बीइंग टेकन एक्सट्रीमली सीरियसली। इधर हैरी केन को बार्सिलोना साइन करना चाहता है, पर केन ने कहा अभी दिलो दिमाग केवल इंग्लैंड में है, बाकी बाद में। आज के मैच रात के 9 बजे आइवरी कोस्ट वर्सेस नॉर्वे, जो जीतेगा उसका मुकाबला ब्राजील से होगा, और सुबह 1 बजे फ्रांस वर्सेस स्वीडन। फिर कल सुबह 5 बजे मेक्सिको वर्सेस इक्वाडोर। इंग्लैंड कल शाम 6 बजे खेलेगी कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के खिलाफ, और मिडनाइट किक ऑफ बेल्जियम वर्सेस सेनेगल। आपने देखा किस तरह से नॉकआउट राउंड ने टीमें डरती हैं आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए ज्यादा मैच ड्रॉ जाते हैं और पेनाल्टी शूटआउट तक जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है और भी होगा। पेनाल्टी ड्रामा देखेंगे एक साथ और बताएंगे आपको वर्ल्ड कप मैगजीन में। टेक केयर।
2: FIFA World Cup 2026, 11 जून से 19 जुलाई। Catch all the news, views, previews and latest updates.

चलो भाई, स्वागत है स्वागत है, वेलकम ट्यूसडे 30th of June। जी हाँ, बाय बाय टाटा बाय बाय कहने का मन तो नहीं करता, लेकिन इस जून महीने को भगाना पड़ेगा, तभी तो हम नए महीने को स्वागत करेंगे उनका। चलिए, वैसे जैसे विकास का हम थोड़ी देर में स्वागत करने वाले हैं, जो कि आ रहे हैं लेकर आपके लिए हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम। एंड अभी

0: चलिए जी, इसी के साथ मेरे जाने का टाइम हो गया है. विकास आ गए आपका साथ देने के लिए. मैं आपसे मुलाकात करूंगी कल मॉर्निंग में 7 बजे. बाय.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
3: Yeah, here we go again. Authentic, original, and better than our right.

0: समाचारों को लेकर आस्था आ चुकी है। आस्था, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद। नमस्कार सभी को। राज्यसभा के कार्य आज फिर से शुरू होंगे। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। सांसद विशेष रूप से घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनों को और मजबूत बनाने तथा पिनल कोड की कुछ धाराओं में संशोधन से संबंधित दो विधेयकों पर विचार करने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 की तीसरी पढ़त भी होगी, जिससे सरकार को बजट में घोषित कदमों को लागू करने का कानूनी अधिकार मिल पाएगा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 13 सवाल पूछे जाएंगे।

0: इनमें से दो प्रश्न पेंशन सुधार से जुड़े होंगे। विपक्षी सांसद एड्रियन ड्यूवाल सितंबर 2025 में गठित पेंशन सुधार विशेषज्ञ आयोग के कार्यों पर सवाल खड़े करेंगे। वे जानना चाहते हैं कि अंतरिम रिपोर्ट पेश किए जाने तक आयोग ने कितनी बैठकें लगाई हैं। अपने दूसरे प्रश्न में वे स्टीयरिंग कमेटी ऑन पेंशन रिफॉर्म के कार्यों पर भी जानकारी मांगेंगे। बजट 2026-2027 में 85 वर्षों बाद वक्फ एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, जहां इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और सुप्रशासन को मजबूत करना है। इस विषय पर कल MBC 1 और MBC 7 पर प्रसारित विशेष कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की गई थी। कार्यक्रम में श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने कहा कि इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य वक्फ के प्रबंधन को और प्रभाव बनाना है। और ऊर्जा एवं सार्वजनिक सेवाओं के मंत्री पैट्रिक आसियावादेन कल ग्रांड थिएटर कार्यक्रम के अतिथि थे। उन्होंने बजट 2026-2027 में घोषित फोटोवोल्टाइक पैनल्स लगाने पर 25% सब्सिडी का स्वागत किया। उन्होंने ये भी कहा कि CWA का बोर्ड अगस्त महीने से व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पानी के शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, हालांकि इसका असर घरेलू उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने वाला है। विदेश स्तर की खबरें जो आज सुर्खियों में हैं, उनमें जर्मनी में माताओं और बच्चों के केंद्र में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी 3 महीने की बेटी की देखभाल को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद के कारण केंद्र पहुंचा था। घटना में कई अन्य लोग घायल बताए जाते हैं। तो ये थी अब तक की खबरें, हमें आगे दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Hey, good morning. स्वागत है आप सभी का. Yes, 30th of June, 9:08 और वक्त हो गया है कि हम और आप मिलें और चारों तरफ म्यूजिक के फूल खिलें. ये कैसे होता है? ये जो होता है जब आप एंट्री मारते हैं म्यूजिक वर्ल्ड में. हेलो, गुड मॉर्निंग. मैं विकास आपके साथ रहने वाला हूँ टिल 12, यानी 3 घंटे का ये सफर. और मुझे मिल गया ये अवसर कि आपके साथ कुछ कमाल के गानों को जरूर शेयर करूं और साथ साथ में कुछ हाउस होल्ड देखो टिप्स, बॉलीवुड की बातें होने वाली, लाइफ स्टाइल से जुड़ी कुछ बातें होंगी. इट्स ऑल अबाउट स्टेइंग एक्टिव, स्टेइंग फिट एंड फाइन. बस फ्रीक्वेंसी सेट करो और सेट करो अपना मूड.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: फोटो खींच गई?
1: अरे शाम तो जाएंगे ऐसे ही है, हंसते मुस्कुराते इन मोमेंट्स को कैप्चर कर लें।
0: जिंदगी ऐसे ही जल्दी जल्दी निकल जाती है, लेकिन अगर आप रोक कर उसको बनाते हैं बहुत ही स्पेशल, तो लगता है लम्हे जीने के लिए हर पल जी भर कर। RM2

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए साहब, डालते हैं नजर आपकी राशियों पर और शुरुआत करते हैं वो
2: एरीज मेष राशि।
1: भाई आज सितारे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं कि अपनी सेहत को प्रायोरिटी दें। यदि किसी पुरानी परेशानी को आप नजरअंदाज कर रखे हैं तो दोबारा ध्यान मांग सकती है। अच्छी बात यह कि भाई बहनों का सहयोग आपके किसी मजबूत सहारे की तरह रहेगा और साथ मिलकर कई अटके हुए काम आपके आगे बढ़ सकते हैं।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी मित्र बन सकती है और बड़ी चुनौती भी। इसे बोलने से पहले एक बार थोड़ा सोच लें, आपकी समझदारी होगी। छोटी सी बात को तूल देने से बचें क्योंकि जो जरूरी नहीं है उस विवाद में ना ही पड़े, वक्त जाया होगा। कार्य क्षेत्र में किसी सहकर्मी किसी कलीग की बात दिल को लग सकती है लेकिन धैर्य आपको स्थिति का विजेता बनाएगी।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज का दिन सुखद बहुत सारे समाचार लेकर आएगा। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है और मुलाकात का यादगार पल वापस लेकर आएगी। स्टूडेंट को पढ़ाई में थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन हमेशा प्रयास करते रहेंगे रेगुलरली तो सफलता की ओर लेके जाएगा। आज आप किसी मित्र की सहायता के लिए आगे बढ़ सकते हैं और यही भाव आपके संबंधों को और मजबूत करेगा।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। क्रोध में लिया गया एक छोटा सा निर्णय भी परेशानी खड़ी कर सकता है और जीवन साथी की सलाह को हल्के में ना लें क्योंकि उनके शब्दों में आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट सिग्नल छुपा हो सकता है। परिवार के साथ किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा, चेहरा खिलेगा, घर का वातावरण बदलेगा।
2: लियो सिंह राशि।
1: लियो, जो भी काम मिले उसको कर दियो। वैसे आज दोस्तों के साथ बिताए गए कुछ खुशनुमा पल आपको अच्छी फीलिंग दे सकते हैं। हंसी मजाक, पुरानी यादें, उसका सिलसिला आपके मन को हल्का और प्रसन्न बनाएगा। लेकिन इस खुशी के बीच अपने जरूरी कार्य को नजरअंदाज ना करें। आय बढ़ाने के उठाए आपके कदम काम करेंगे लेकिन आपको सही टाइम पर सही निर्णय लेना होगा।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: भाई अंदर जो आपने क्रिएटिविटी छुपाई ना इसको निकाल लो। नहीं प्लीज, कम ऑन, यू कैन डू इट। नए विचार और नई जो आपकी प्लानिंग चल रही है उसको नई दिशा देने में आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, सतर्कता है, वो मदद करेगी। किसी अनुभवी सहकर्मी की सलाह भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। समाज में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत है जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: चलाते समय विशेष सावधानी बहुत जरूरी। जिस कार्य को लेकर आप लंबे समय से चिंतित थे उसमें प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक मामलों में आज थोड़ा सतर्क रहना बेहतर होगा और किसी को उधार देने से बचना यानी कि आपकी समझदारी होगी।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: जीवन में आराम और सुविधाओं का स्तर बढ़ता हुआ महसूस हो सकता है। ठीक है, इतना काम कर रहे हैं तो जरूरी है कि अपने सुख सुविधाओं के कुछ गैजेट्स हो या फिर कुछ मरम्मत कार्य रेनोवेशन, इसमें आप थोड़ा सा वक्त बिता सकते हैं लेकिन बजट पर पूरा पूरा ध्यान। अब धीरे धीरे आपकी चिंताएं भी कम हो रही हैं, मन हल्का हो रहा है। परिवार के बड़े सदस्य कोई ऐसी सलाह दे सकते हैं जो भविष्य के लिए काफी मूल्यवान साबित हो सकती है।
2: सजिटेरियस धनुराशि।
1: भाई आपके जो प्रयास है रंग लाते हुए दिखाई देंगे। यदि कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चने थी तो अब उनके दूर होने की संभावना बन रही है। आपकी मेहनत और समर्पण आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। पुराने लेन देन को निपटाने के लिए समय बिल्कुल अनुकूल।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आर्थिक मामलों में सितारे आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। धन और समृद्धि में वृद्धि के संकेत हैं और व्यापार में भी लाभ की संभावना बनी हुई है। किसी यात्रा या मुलाकात के दौरान किसी जानकारी के मिलते ही आप ऐसे ही ना बांटे, सोचे आपके लिए क्या अच्छा है। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा, इसमें कुछ लोग आपके कारोबार को नई दिशा देने में मददगार साबित हो सकते हैं।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज का दिन यानी कि 30 जून आपके लिए काफी सुकून देने वाला दिन होगा। रिश्ते में मधुरता लेकर आने वाला

0: दिन होगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर दूरी या मतभेद अगर थी तो फिर दूर हो सकती है, आपका मन हल्का रहेगा और परिवार के साथ घूमने या समय बिताने की योजना बना सकते हैं। छोटे छोटे सरप्राइजेस जिंदगी में स्पाइसेस की तरह काम करते हैं। अरे साहब कुछ करते रहिए, जरूरी है आपके लिए भी। हाँ, माता जी की सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता बनी रह सकती है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं अगर रेगुलर विजिट करते हैं तो।
1: स्पाइसेस मीन राशि,
0: आपका ध्यान अपनी जरूरतें और इच्छाओं को पूरा करने में ज्यादा रहेगा, इस कारण खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है। आपका स्वभाव कभी कभी जल्दी प्रतिक्रिया देने वाला हो सकता है, यानी कि आप रिएक्ट थोड़ा जल्दी करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को काम एंड क्वाइट रखें। किसी भी कार्य को जल्दबाजी करने से बचें, क्योंकि धैर्य ही आज आपकी सफलता की कुंजी बनी रहेगी। बस सोच समझ कर बोलें, आपके लिए सम्मान और सफलता दोनों लेकर आने वाला दिन।
2: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अच्छा सोच रहा हूँ कि अगर वो गाना था ना, मेरे पिया गए रंगून, किया है हमें टेलीफोन, और महीना भी है जून, तो बात आगे बढ़ सकती थी। नहीं, चलिए साहब अपनी क्रिएटिविटी को आगे निकालते रहिए। और अंतेश हमारे साथ दे रहे हैं स्विट्जरलैंड से, और बड़े खुश हैं कि उनकी टीम काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है। वेरी गुड। वैसे वर्ल्ड कप के चक्कर में अपने लाइफ स्टाइल मंत्रा को नहीं भूलना चाहिए। नहीं, योर लाइफ स्टाइल मंत्रा ऑफ द डे, कंपैरिजन से इंस्पिरेशन तक। गुड मॉर्निंग भाई। आज का लाइफ स्टाइल मंत्रा है, अपनी लाइफ को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर मत कीजिए। अरे साहब, हर किसी की अपनी जिंदगी होती है, अपना स्टाइल होता है, अपना मंत्रा होता है। भाई सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखता है, नहीं, वेकेशंस, प्रमोशंस, फिटनेस, रिलेशनशिप्स, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब हम बार बार अपनी लाइफ को दूसरों की बेस्ट मोमेंट से कंपेयर करना शुरू करते हैं तो स्ट्रेस और डिससैटिस्फैक्शन बढ़ सकता है। रियलिटी ये नहीं है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है और हर सक्सेस के पीछे स्ट्रगल्स भी होते हैं जो हमें दिखते नहीं। भाई अपना बेस्ट मोमेंट ही आप सोशल मीडिया पर डालते हैं, उसके पीछे कहानी क्या है कोई कह नहीं सकता। नहीं, इसलिए कंपेयर करना छोड़ दें। आज एक छोटा सा चैलेंज लीजिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए सोचिए, इस साल आपने कौन सी एक चीज सीखी या अचीव की जिस पर आपको खुद पर गर्व है। हो सकता है कि वो एक नया स्किल हो, किसी मुश्किल वक्त को हैंडल करना हो, या सिर्फ अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालना हो। याद रखिए, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को कम करता है, लेकिन ग्रैटिट्यूड कॉन्फिडेंस को ग्रो कराने में मदद करता है। तो बताइए, आज आप अपनी किस अचीवमेंट के लिए खुद को एक वर्चुअल हाई फाइव देना चाहेंगे?
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

ऐसा होता है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. और वैसे भी कहते हैं कि लाइफ की टेंशन को थोड़ा सा स्माइल और एक अच्छे जोक से हल्का किया जा सकता है. कुछ लाइनें उसके बाद सब ठीक. तो आज का चैलेंज ये है कि किसी एक दोस्त, कलीग या फैमिली मेंबर को एक जोक सुनाकर उनके चेहरे पर स्माइल ले आइए. अगर ऐसा कर सकते हैं तो बल्ले बल्ले आगे चलें. हाँ, वो पप्पू एक बार फिर से काम पर लेट हो गया. बॉस ने फोन किया और कहा, पप्पू तुम फिर से लेट? हाँ सर, वो ट्रैफिक बहुत था. क्या बात कर रहे हो, ट्रैफिक बहुत था? तुम तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो. वर्क फ्रॉम होम? हाँ सर, हाँ एक्चुअली. पप्पू को भी याद आया कि वर्क फ्रॉम होम कर रहा है. सर वो ट्रैफिक था एक्चुअली, वो बेड से लेकर वो ऑफिस चेयर तक जो घर में लगा रखी है.

0: सही गाने लेके जाएगा अब सीधा 10 बजे समाचार की ओर, उसके बाद फिर से मुलाकात होगी 11 टू 12 भी सिलसिला चलने वाला है। थोड़ी देर में खाने पीने का टाइम, म्यूजिक टाइम हमेशा 24/7।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: Welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Okay, good morning. Time check. Exactly 10 a.m. सुनने वाले विद्यम उनसे मिलते हैं जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
6: नमस्कार विकास, सभी सुनने वालों को नमस्कार। राज्यसभा के कार्य आज फिर शुरू होंगे। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। सांसद विशेष रूप से घरेलू हिंसा से जुड़े कानून को और मजबूत बनाने तथा पिनल कोड यानी दंड संहिता की कुछ धाराओं में संशोधन से संबंधित दो विधेयकों पर विचार करेंगी। इसके अलावा अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 की तीसरी पढ़त भी होगी, जिससे सरकार को बजट में घोषित कदमों को लागू करने का कानूनी अधिकार मिल सकेगा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 13 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से दो प्रश्न पेंशन सुधार से जुड़े होंगे। विपक्षी सांसद अद्रियन जुवाल सितंबर 2025 में गठित पेंशन सुधार विशेषज्ञ आयोग के कार्यों पर सवाल उठाएंगे। वे जानना चाहेंगे कि अंतरिम रिपोर्ट पेश किए जाने तक आयोग ने कितनी बैठकें की। अपने दूसरे प्रश्न में वे स्टीयरिंग कमेटी ऑन पेंशन रिफॉर्म के कार्यों पर भी जानकारी मांगेंगे। इसके अलावा मॉरिशस हवाई अड्डे, ऑपरेशन स्ट्राइक और सेफ सिटी परियोजना से जुड़े मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री से सवाल किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ वकफ कमिश्नर्स के सचिव और चीफ एग्जीक्यूटिव नयाज बंधन ने बताया कि मॉरिशस में इस समय 539 वकफ पंजीकृत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वकफ तीन प्रकार के होते हैं, धार्मिक, परोपकारी और पारिवारिक। वहीं आवास एवं भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा कि सभी पक्षों से व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा ताकि सभी सुझावों पर ध्यान दिया जा सके और लोगों की चिंताओं का समाधान हो। इसी सिलसिले में बुधवार को उनके कार्यालय में एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। जॉन मिक मार्टिंगेल मामले में एसएसआर हवाई अड्डे पर नशीले पदार्थ मिले शराब की दो बोतलों के साथ गिरफ्तार यूक्रेन की नागरिक मारिया पेरेसोल्किना के मुकदमे की सुनवाई कल असाइज़स कोर्ट में जारी रही। बचाव पक्ष ने

0: अंगत जॉन मिकमार्टिंगेल के बयान अदालत में पेश किए जाने की मांग की है। इस बीच मुख्य जांच अधिकारी से पूछताछ अदालत के फैसले तक स्थगित कर दी गई है। मामले की अगली सुनवाई आज होगी। और विदेश में मोनाको में रुई रेवेरों पे लुई फ्रोला स्थित एक आवासीय इमारत में हुए विस्फोट में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट में बोल्ट और छड़ों वाले एक विस्फोटक उपकरण का इस्तेमाल किया गया था और इससे संभावित आतंकवादी हमला मानकर जाँच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध को फ्रांस की सीमा की ओर भागते हुए देखा गया है। घटनास्थल पर 100 से अधिक पुलिस और आपातकालीन कर्मी तैनात किए गए हैं और राहत कार्य जारी है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Catchy music, yeah? हाँ चाहे वो पुराना गाना हो लेकिन एक बार फिर से न्यू स्टाइल के अंदर ऑल सेट लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू द सेकंड आवर इट्स ऑल हैपनिंग राइट हियर ऑन
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: हाँ तो जैसे बता रहा था कि आज का दिन आज है इंटरनेशनल जोक डे, यानी कि ये नहीं कि आप किसी भी चीज

0: बहुत हल्के में ले, लेकिन हाँ अगर आप कुछ कहते हैं, तीन चार लाइंस एंड जिसको जो कहते हैं सब, हाँ और किसी के चेहरे पर स्माइल ला सकते हैं तो आपका काम हो गया, यू हैव डन योर जॉब। ये डॉक्टर कहता है कि खुश रहने से सब कुछ पॉजिटिव होता है, अंदर जो हॉर्मोन्स हैं जैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, एवरीथिंग चेंजेस। और वहीं पर आज बात करने की बार फिर से बी टाउन की खबरें, अरे जैसे मूवी चल रही है कॉकटेल से लेकर वेलकम टू द जंगल, क्या मूवी क्या कमाल कर रही है। और वहीं पर वी ऑल्सो गोना टॉक अबाउट हेल्थ एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ बातों के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के जमाने में जहां पर सब कुछ स्क्रीन पर आ गया है, फिर चाहे आपकी जिंदगी हो या फिर आपकी आंखों के सामने स्क्रीन, ऐसा लगता है कि जिंदगी रंगीन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस किस से हम लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, वी गोना टॉक अबाउट दिस। आप भी शामिल हो जाइए 5491294 पर।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं, अब इसकी जरूरत नहीं। हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरी, क्रॉप टॉप्स, शेरवानी, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: Uniquement chez King Savers, du 25 juin au 13 juillet, le promo pack Nescafé est à 359,80 €. Le bundle pack Kaolin est à 489,80 €.
2: Chips, chips, chips, allez, allez, allez. Chips, chips, chips, ça c'est nos biscuits.
3: Cheddar, chicken crimpy, nacho cheese, barbecue, pizza, tout ça vient et n'a pour faire vous content. En chips, tout programme 10 bouts.
2: Chips, chips, chips, allez, allez, allez. Chips, chips, chips, ça c'est nos biscuits.
3: Chips, ça nos biscuits.
4: Fin de mois. Et si on faisait les choses autrement? Du 26 juin au 9 juillet, chez Winners, retrouvez les grandes marques que vous aimez à des prix qui font vraiment du bien. Les 2 kilos de riz basmati Raj Mahal XXXL 11-21 à 129,95 € et les 5 litres de liquide vaisselle Winners à 139,95 €. Pas oublier, ex-can to pay te gagne plus points WIV.
5: On est tous Winners!

0: FM2
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. Welcome to RM2.
1: Musti Mornings, Radio Musti.
2: चलिए साथ द म्यूजिक कंटिन्यू, लेकिन साथ साथ में अभी के लिए फैशन टिप्स और कहानी, चलिए जानते हैं क्या है भाई। बॉलीवुड से तो हमने बहुत सारे रेफरेंस ली हैं, लेकिन आज की जो फैशन स्टेटमेंट वो है स्टेटमेंट पीस स्टाइलिंग। फैशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप भी एक बोल्ड पीस पहने, जैसे कि एक वाइब्रेंट जैकेट, आजकल ठंड हो रही है तो एक जैकेट काफ़ी कमाल कर जाएगी। नहीं हाँ, बहुत सारी फॉर्मल स्टाइल या फिर डेनिम जैकेट्स आती हैं, या इवन लेदर जैकेट्स जो बहुत ही प्रिंटेड एंड ब्यूटीफुली डन होती हैं, आई कैचिंग स्नीकर्स भी हो सकते हैं। तो बस अपनी बाकी की आउटफिट को सिंपल रखें अगर इतनी वाइब्रेंट कोई भी फैशन स्टेटमेंट वाला पीस आप पहन रहे हैं तो, और बाकी लुक क्लासी रखकर, ये होगा ऊपर से एक स्टाइल स्टेटमेंट। इस ट्रेंड का एक जबरदस्त बॉलीवुड एग्जांपल है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। भाई मनोज मल्होत्रा जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, उन्होंने कैरेक्टर्स के लुक्स में ब्राइट कलर्स और स्टेटमेंट आउटफिट्स का यूज किया है, लेकिन हर लुक में एक क्लियर फोकल पॉइंट था। इसी वजह से आउटफिट्स मेमोरेबल लगे और क्लटर्ड नहीं। तो बस आज का फैशन चैलेंज यही कि अपनी वार्डरोब से एक स्टेटमेंट आइटम निकालिए और उसके साथ बाकी आउटफिट को न्यूट्रल रखिए। देखिए बिना ज्यादा मेहनत के कितना पॉलिश और कॉन्फिडेंट लुक क्रिएट करेगा।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: बस क्या करेंगे, सुबह की थोड़ी सी ठंडी और फिर लगता है थोड़ा सीन लेजी, लेकिन बस करें क्या। अगर आप इंतजार करें कि कब आपको कहीं जिम में मेंबरशिप मिलेगी और आप थोड़ा एक्सरसाइज कर पाएंगे, भाई यही रीज़न है। नहीं, वो जिम नहीं जाता ना आजकल, टाइम नहीं मिलता, इसलिए कुछ कर नहीं पाता। लेकिन आज का फिटनेस मंत्र यही कि वर्कआउट सिर्फ जिम में नहीं होता, हर मूवमेंट वर्कआउट होती है। जी, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर एक घंटे का वर्कआउट नहीं कर पाए तो आज का दिन फिटनेस के नाम नहीं है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिन भर की छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटीज आपके ओवरऑल फिटनेस और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। हर 30 से 60 मिनट बैठे रहने से आपकी बॉडी बिल्कुल ढीली पड़ जाती है, इसलिए स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ के आइए तो बॉडी मूवमेंट में आपको फायदा मिलेगा। भाई आज का चैलेंज बहुत सिंपल है, जब भी आपका फोन बजे या कोई गाना खत्म हो, उठकर कम से कम 2 मिनट वॉक कीजिए। ऑफिस में है कॉरिडोर तक जाइए, घर पर है बालकनी या फिर लिविंग रूम में होकर आइए, अरे चक्कर लगाइए। और बस आपसे एक ही सवाल, आप अपने दिन के सबसे ज्यादा स्टेप्स कब चल लेते हैं, ऑफिस में या फिर घर पर, मॉर्निंग वॉक पर या फिर शॉपिंग करते वक्त, हमें बताइए 5499-1294 पर।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चलिए आपको कुछ मैसेज और कहते हैं कि जब बाहर निकलते हैं और अपने गार्डन में थोड़ा सा टहल लेते हैं तो इतनी खूबसूरती दिखती है।

0: मैं आ जा अशोक, थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज। और कहते मैंने खिड़की खोल ली कि म्यूजिक आता रहे और ऐसा लगे जैसे अपना साथी साथी में चल रहा है। अरे जिनके पास पेट्स हैं और उनको वक्त दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो बिजी हो जाते हैं। अब देखते हैं कि मौसम ऐसा है, कौन बाहर निकले, लेकिन वो आप ही का इंतजार कर रहे हैं, खाली आपका। तो थोड़ा सा वक्त उनके लिए बिताना इज लाइक आपने उनको VIP बना दिया, उनको वो वक्त दे दिया जिसका हमेशा उनको इंतजार होता है 24/7। तो अशोक थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज, यहाँ पर कहा कि नेचर के पास आकर कितनी खूबसूरती मिलती है, कितना अच्छा लगता है। सो कुछ भी कीजिए, थोड़ा सा वक्त अगर बाहर बिताएंगे तो बहुत बहुत बढ़िया। और अपना मॉरिशस जो है इतना खूबसूरत। हाँ वैसे काफ़ी बारिश हुई और काफ़ी उन्होंने कहा कि काफ़ी जगह पानी भर गया था और कीचड़ और जाने क्या क्या, लेकिन बारिश की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। आप सोचिए कि जहाँ पर गर्मी है, धूप है, प्रकृति का हर दिन कोई नया रूप है, हमें उसको बाएँ खोल कर गले लगाना चाहिए, क्योंकि हम ही हैं इसके रिस्पॉन्सिबल। जहाँ पर थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है या फिर ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, इतने सारे व्हीकल्स, इतने सारे एयर कंडीशनर्स, इतना सब कुछ, एंड फाइनली अगर एक छोटा स्टेप हम कर सकते हैं तो क्यों नहीं, है ना। राइट, और चलते हैं कुछ और मैसेज की तरफ। यहाँ पर आ गए हैं, कहते नमस्ते, मेरा नाम है गरिमा और बस सुबह सुबह की प्रिपरेशन के अंदर म्यूजिक भी शामिल हो जाता है। हर कोई बिजी अपने अपने काम में, लेकिन RM2 पर जैसी म्यूजिक ऑन तो म्यूजिक तो फ्री फ्लो बिना ट्रैफिक के, वही प्यारा म्यूजिक, ऐसे ही साथी हमेशा साथ।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Time check, it's 11 a.m. राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स के साथ स्टूडियो में आगे विधिमान से मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी सुनने वालों को नमस्कार। राज्यसभा के कार्य आज फिर शुरू होंगे। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। सांसद विशेष रूप से घरेलू हिंसा से जुड़े कानून को और मजबूत बनाने तथा पिनल कोड यानी दंड संहिता की कुछ धाराओं में संशोधन से संबंधित दो विधेयकों पर विचार करेंगे। इसके अलावा अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 की तीसरी पढ़त भी होगी, जिससे सरकार को बजट में घोषित कदमों को लागू करने का कानूनी अधिकार मिल सके। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से 13 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से दो प्रश्न पेंशन सुधार से जुड़े होंगे। विपक्षी सांसद अद्रियन जुवाल सितंबर 2025 में गठित पेंशन सुधार विशेषज्ञ आयोग के कार्यों पर सवाल उठाएंगे। वे जानना चाहेंगे कि अंतरिम रिपोर्ट पेश किए जाने तक आयोग ने कितनी बैठकें की। अपने दूसरे प्रश्न में वे स्टीयरिंग कमेटी ऑन पेंशन रिफॉर्म के कार्यों पर भी जानकारी मांगेंगे। बोर्ड ऑफ वकफ कमिश्नर्स के सचिव और चीफ एग्जीक्यूटिव नयाज बंधन ने बताया कि मॉरिशस में इस समय 539 वकफ पंजीकृत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वकफ तीन प्रकार के होते हैं, धार्मिक, परोपकारी और पारिवारिक। वहीं आवास एवं भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा कि सभी पक्षों से व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा ताकि सभी सुझावों पर ध्यान दिया जा सके और लोगों की चिंताओं का समाधान हो। इसी सिलसिले में बुधवार को उनके कार्यालय में एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। और विदेश में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि पिछले हफ्ते हुए हमलों के आदान प्रदान के बाद ईरान ने बैठक का अनुरोध किया है और उन्होंने कहा कि ये आज कतर में होगी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ किसी भी पूर्व निर्धारित बैठक से इनकार किया है, लेकिन कहा है कि वो ईरान की जमी हुई धनराशि जारी करने के मामले में आगे की कार्रवाई के लिए दोहा में विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजेगा। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: देखे उसे वर्ल्ड कप के अंदर क्या कमाल हो रहा है, कमाल की टीम्स हैं, एंड एंड तक नहीं पता चलता कि क्या हो सकता है। अगर रात को मैचेस देखते देखते आंखें आंखें फुटबॉल जैसी हो गई हैं, बड़ी बड़ी गोल गोल सोलन, तो साहब तो अपने आप को टाइम दो थोड़ा सा।
1: RM2 Radio Musti.
0: चलो भाई हम भी वापस आ गए, एंड दैट्स योर मस्ट मॉर्निंग। और ये थे इसरा घंटा, बीट को थोड़ा चेंज करें। गायत्री जी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल, और कहते हैं गानों का मजा आ रहा है, थैंक यू। और मेट्रो इन दिनों से गाना सुनना चाहती हैं, चलिए कोशिश करता हूँ। वहीं पर यालेश कहते हैं गुड मॉर्निंग एक गरम गरम कॉफी के साथ, और मामा निशा पापा हैं साथ दे रहे हैं, और 25th उनकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी है। लॉट्स ऑफ लव यश है, साथ में वैष्णवी परिणीता कृष्णा युधिष्ठर मामा विदुला ऋषि

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जैसा बॉलीवुड की बात करें तो अभी तो दो मूवीज जो कमाल कर रही हैं एंड वी टॉकिंग अबाउट कॉकटेल 2 और वहीं पर वेलकम टू द जंगल। हाँ, ये बात रही कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अभी जहाँ पर शुरुआत हुई थी कॉकटेल 2 की, वो ना एक कॉकटेल ऑफ इमोशंस, यानी कि कभी आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस। अब करें इंसान तो क्या करे, बस इसी को दिखाया गया एक अलग स्टाइल, एक मॉडर्न स्टाइल में, और वहीं पर वेलकम टू द जंगल जो कि फुल ऑन मस्ती है। और कहते ना कि ये एक आर्मी मूवी है, आर्मी यानी कि दिखाते हैं कि यार कोई प्रैक्टिस में लगा पड़ा है और फाइनली वो कहाँ से वो डाकू शाकू एंड ये कहानी एक बार फिर से लौट कर आई। बट गुड, क्योंकि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट इसलिए क्योंकि अक्षय कुमार का डबल रोल है एंड पीपल आर लविंग द सॉन्ग्स, तो बस सब कुछ अच्छा बैठ गया। वहीं पर हम अगर इस मूवी के रिव्यू की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि Yeah, it's something like 3 stars. 3 stars at the moment, 3 to 5 के बीच में पड़ रही है कहानी। Chaotic है और slapstick humor है। अब कहानी की बात करें तो स्टोरी है मिसफिट्स की, जो कि एक ऐसे जंगल में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें हैं और फाइनली Chaotic जो उनका मिशन है वो वाइल्ड टर्न लेता है जब वो असली डेंजर में फंस जाते हैं। क्रिमिनल्स हैं, कन्फ्यूजन है, हिलेरियस मिसहैप्स हैं, सर्वाइवल बन जाता है उनका बिगेस्ट चैलेंज। कहते फिर 80s 90s का जो ब्लैक मनी जो फनल होता है ना मूवीज़ के अंदर, उसको दिखाया गया है, कुछ इंडस्ट्री की कहानी दिखाई गई है। तो परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो अक्षय की अच्छी मूवी है और एनर्जी लाते हैं, कॉमिक टाइमिंग उनकी बहुत कमाल की है, वहीं पर ट्रेडमार्क एक्शन स्टार करिश्मा है उनके रोल के अंदर। और वहीं पर अगर दोस्ती की बात करें तो अक्षय, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, ये है इनकी हाईलाइट। परेश रावल एक बार फिर से प्रूव करते हैं कि क्यों है उनकी आइकॉनिक टाइमिंग, ये अनमैच्ड ही रहने वाली है। चलिए कहानी की बात तो कर ली, थोड़ा म्यूजिक भी हो जाए।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio.

0: FM2 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: Alala Kizoli, ou pas connaît Kizoli Zoli. Alala Kizoli.
3: Uniquement chez King Savers, du 25 juin au 13 juillet, le promo pack Nescafé est à 359,80 €. Le bundle pack Kaolen est à 489,80 €.
0: RM2 Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अच्छा बहुत सारी बातें होती हैं आजकल जो मेडिकल कंडीशंस हैं, कई लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा मेहनत करने वाले, या फिर बीमारी के दौरान सांस फूलने की परेशानी हो सकती है। यदि आपको भी ऐसा होता है सीढ़ियां चढ़ते समय या बिस्तर पर लेटे हुए आपको लगता है कि सांस फूल रही है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई मामले में हार्ट से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकती है। जब तक चेक चेक करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा, नहीं? और कहते हैं हार्ट और फेफड़े यानी कि लंग्स मिलकर पूरे शरीर में ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई करते हैं। सबको पता है जब हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर वॉल्व डिसऑर्डर जैसे कंडीशन होते हैं तो हार्ट कमज़ोर हो जाता है।

0: या डैमेज हो जाता है। स्थिति में हार्ट ब्लड को ठीक से पंप नहीं कर पाता, इस वजह से ब्लड फेफड़ों में वापस चला जाता है, जैसे पानी जमा होने लगता है और फेफड़ों की ऑक्सीजन एक्सचेंज करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। वैसे कहते हैं सीने में दर्द हो, सांस फूलना हो, हार्ट की धड़कन तेज या तेज होने का एहसास अक्सर एक साथ होता है तो दिल की कोई गंभीर बीमारी या संकेत हो सकता है, इसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। वैसे कहते हैं कि एंजाइटी और लंग इन्फेक्शन भी इसका एक कारण हो सकता है। हालांकि सांस फूलने की समस्या कई नुकसान ना पहुंचाने वाले कारण से भी हो सकती है, लेकिन कहते हैं कि मेडिकल एडवाइस लेनी ज़रूरी है। आराम करते समय भी होती है या दिल या फेफड़ों की गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप जाएं, चेक कराएं और अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल एक बार फिर से शुरू करें। अगर आपको लगता है कि नहीं अब उम्र हो गई, अब आराम से बैठें अपनी रॉकिंग चेयर पर और अखबार पढ़ें या फिर बस म्यूज़िक सुने और बाहर देखें, नहीं ठीक है, लेकिन बाहर देखना नहीं, बाहर घूम कर थोड़ा फांसे दिखाइए, अपना एक रूटीन तो बनाइए, ज़रूरी है। जितना खा रहे हैं, अगर सनराइज़ पे आप उठ गए और विटामिन डी ले लिया और सनसेट से पहले खा लिया, ब्यूटीफुल भाई, आपकी कैलोरी भी बर्न और एक्सरसाइज करने की भी टर्न।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: brought to you by Lolo Hypermarket.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.
0: अभी हेलो टू ऑल द लेडीज जो बस बिजी रहती हैं, अगर ब्रेकफास्ट की बात हो जाती है तो उसके बाद बात होती है लंच की, डिनर में क्या पकाना है, अरे कहाँ बाहर जाना है, बहुत सारी बातें। लेकिन वो स्मार्ट होते हैं जो सब कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि जो भी बचा है उसको कैसे स्मार्टली इस्तेमाल करें, वेस्टेज बिल्कुल नहीं है। और अभी के लिए बात करने वाले हैं हम साफ सफाई की। काफ़ी बारी होता है कि आप खाना शुरू करते हैं पकाना और उसके साथ साथ बर्तन होते चले जाते हैं और उसको आप साइड में रखते हैं, लेकिन एक काम जहाँ चल रहा है तो क्यों ना दूसरे काम पर भी थोड़ा सा हाथ डाला जाए। सबसे बड़ा किचन हैक यही है कि कुकिंग के बाद नहीं, कुकिंग के साथ ही क्लीनिंग। अरे जब सब्जी पक रही हो या फिर चाय उबल रही हो उस वक्त इस्तेमाल किए हुए बोल, स्पून या चॉपिंग बोर्ड साफ कर दीजिए, काम भी जल्दी ख़त्म होगा और सिंक भी ओवरलोड नहीं होगा। याद रखिए, स्मार्ट कुक वही है जो खाना भी स्वादिष्ट बनाए और किचन भी मुस्कुराती ही छोड़ जाए।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty.
5: Check your time. It's already known. Are you sent there? Samachar Vidhi Ma ke saath. Namaskar.
6: नमस्कार गिनीशा सभी को नमस्कार. विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन इस मंगलवार को सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुबो के लिए संबोधित था. ज्योतिषों का ये जानना चाहते थे कि क्या मंत्रालय ने पेंशन सुधार के संदर्भ में कोई परामर्श किया है जिसमें नेशनल पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड को लागू करना और पोर्टेबल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड को समाप्त करना शामिल है. इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 13 प्रश्न पूछे जाएंगे. इनमें से 2 प्रश्न पेंशन सुधार से ही जुड़े होंगे. विपक्षी सांसद अत्रियन चुवाल सितंबर 2025 में गठित पेंशन सुधार विशेषज्ञ आयोग के कार्यों पर सवाल उठाएंगे. अपने दूसरे प्रश्न में वे स्टीयरिंग कमेटी ऑन पेंशन रिफॉर्म के कार्यों पर भी जानकारी मांगेंगे. बोर्ड ऑफ वाकफ कमिश्नर्स के सचिव और चीफ एग्जीक्यूटिव नयाज बंधन ने बताया कि मॉरिशस में इस समय 539 वकफ पंजीकृत हैं. उन्होंने ये भी कहा कि वकफ 3 प्रकार के होते हैं, धार्मिक, परोपकारी और पारिवारिक. वहीं आवास एवं भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा कि सभी पक्षों से व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा ताकि सभी सुझावों पर ध्यान दिया जा सके और लोगों की चिंताओं का समाधान हो. इसी सिलसिले में बुधवार को उनके कार्यालय में एक बैठक भी आयोजित की जाएगी. जॉन मिक मार्टिंगेल मामले में एसएसओ हवाई अड्डे पर नशीले पदार्थ मिली शराब की 2 बोतलों के साथ गिरफ्तार यूक्रेन की नागरिक मारिया पेरेसोल्किना के मुकदमे की सुनवाई कल असाजस कोर्ट में जारी रही. बचाव पक्ष ने दिवंगत जॉन मिक मार्टिंगेल के बयान अदालत में पेश किए जाने की मांग की है. इस बीच मुख्य जांच अधिकारी से पूछताछ अदालत के फैसले तक स्थगित कर दी गई है. मामले की अगली सुनवाई आज हो रही है. और विदेश में वेनेजुएला में पिछले हफ्ते आए भूकंप के बाद कचालाम शहर में जीवित बचे लोगों की तलाश जारी है. अब तक 1700 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन आपदा के कई दिनों बाद भी कुछ लोगों को ढही हुई इमारतों के मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है. कुछ इलाकों में पड़ोसी और परिजन अपने हाथों और जो भी औजार उन्हें मिल रहे हैं उनकी मदद से अपनों की तलाश कर रहे हैं. तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. थोड़ी देर में शोक समाचार. नंबर 58 जैक यूजेन पिचेन स्ट्रीट ग्रैनवे नॉर्थ वेस्ट पोर्टली में 88 साल के 88 इयर्स ओल्ड के श्री पॉ बोहिरा, जो पागा नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके भाई रूपलाल गणेश हीरा के घर नंबर 50

0: रेट्रो रिदम।
1: तो चलिए जी चेक योर टाइम, स्टूडियो की घड़ी में 12:08 हो चुके हैं। वेलकम ऑन बोर्ड जहां पे गिनिश आ गई है आप लोगों का साथ देने के लिए, दैट्स योर रेट्रो रिदम। सो विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी और गिनिशा का प्रणाम। रेट्रो रिदम में तो हमने स्वागत कर लिया है बाय प्लेइंग दिस ब्यूटीफुल एंड बहुत ही मेसमराइजिंग गाने आप लोगों के लिए। आज हो रही है ट्यूजडे 30 जून है, टू दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, आई जस्ट वांट टू डेडिकेट द एंटायर शो आप लोगों के नाम। और साथ में जस्ट टू रिमाइंड यू, अगर आप खाना खा रहे हो या हैविंग योर लंच, क्योंकि अभी लंच टाइम है, सो बोन अपेटाइट टू यू माय डियर फ्रॉम द एंटायर मस्ती टीम की तरफ से। तो चलिए जी जस्ट गेट कनेक्टेड टू अस। और आपको तो पता है कि रेट्रो रिदम में हम आपको खींच के लेके जाते हैं उन वादियों पे जहाँ पे खूबसूरत पुराने गानों की बरसात होने वाली है। सो जस्ट एंजॉय ऑल दिस ब्यूटीफुल एंड मेसमराइजिंग गाने जो स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और एज यूजुअल योर डेडिकेशन आर द मोस्ट वेलकम ऑन 5499-1294 पर 5499-1294। स्पेशल फील कराना चाहोगे आज के दिन, अगर आज उनका जन्मदिन है, सो यू नो व्हाट टू डू, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम योर मैसेजेस।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती,
2: पुराने गानों का मैजिक और 90s का तड़का इन योर वेरी ओन।

0: Retro Rhythm.
1: I really hope that you're loving these beautiful and lovely गाने जो स्पेशली आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं जहां रेडियो मस्ती दैट्स अ रेट्रो रिदम 12:26 हो चुके हैं और शुरू हो चुका है रेट्रो रिदम का वो सफ़र जहां हर गाने की याद है और हर धुन वैसे कहानी है मेरी जान। तो वैसे ही अगर आप अपना लंच खा रहे हो सो आराम से बैठ के ये खूबसूरत गानों के साथ अपने यम्मी यम्मी खाना को आप एंजॉय कर लीजिए और हो सकते हैं अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो मज़ा ले लीजिए इन खूबसूरत गानों का। बस अपने जो गाड़ी का शीशा है थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, ठंडी ठंडी हवा जब मुंह पे आएगी और ऐसे गाने ही आप सुनेंगे तो व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, यू गोना रियली लव इट। और अगले इस डेढ़ घंटे की सफ़र में हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के वो हसीन नगमे जो आज भी दिल की धड़कनों को बस तेज़ कर रहते हैं और दिल की धड़कन बन ही जाते हैं। वैसे मैं हूँ गिनिशा जो साथ दे रहे हैं और चलिए यादों की ये खूबसूरत म्यूज़िकल सफ़र में हम लेकर आए हैं कुछ और भी गिने चुने नगमे और साथ में आपके डेडिकेशंस। तो ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली फॉर यू माई डियर लवली पीपल आउट देयर जो साथ दे रहे हैं जैसे कि कविता जी और सुबह से वो रेडियो मस्ती से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से और आप हमारे साथ हो और हम भी आपके साथ दे रहे हैं तो सोने पे सुहागा हो गया जैसे कि आपने लिखा है। थैंक यू सो मच माई ब्यूटिफुल। सो द नेक्स्ट वन गोज़ आउट टू यू एंड वी हैव अगला गाना बाबू से माला साथ दे रही हैं सुनीता रानी एंड सुखराम और देवदोस परिवार भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी डू हैव शाम देवी चर्न पेरे बेस एंजॉइंग प्रोग्राम फुल ऑन वॉल्यूम गाकर रेडियो मस्ती को आप एंजॉय कर रहे हो। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू एंड आई जस्ट वांट टू विश अ हैप्पी 12th बर्थडे टू प्रिंसेस निजाला ला शार्मोंट और she is from Gombe. So darren shwe tarawish presha lavish and apadu families ki tarah se lots of love and happiness to you my beautiful, wishing you a very happy birthday on Radio Masti. And good afternoon to you Kamal Deep ji, ye agla gana khas kar aapke liye. Vina bolti hai ki aaj jo unki nee sakshita hai unka janmdin hai, so wishing her happy birthday.

0: will be my sweetheart. And आपका मैसेज अधूरा रह गया, सो आई गेस इतना ही है. ज्योति अफशा तो बिना गैस ये अगला गाना रेखा सुरेखा और मध्य परिवार के लिए स्पेशली ऑन RM2 रेडियो मस्ती पर हम डेडिकेट करना चाहेंगे आप लोगों के नाम. बाकी जो लिसनर सुन रहे हैं आप सोचेंगे कि हमें भी भेजना है, 5499-1294 पर भेज सकते हो अपने प्यारे प्यारे दिल की बात.
1: आपका जूता देखा, बहुत हसीन है, इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा. प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी फूल कार्ड अंगूठी रुमाल देते हैं, ये पढ़ा और सुना था, पर ये जूता, लगता है प्यार में आपके यहाँ जूता देने का रिवाज है, दिल चुराने का अच्छा अंदाज है.

0: Retro Rhythm.
1: सच अ ब्यूटीफुल वन स्पेशली आप लोगों के लिए अभिजीत एंड कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में आप लोगों के लिए ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती एंड वेल वी हैव समवन वेरी हियर क्यूट एंड स्पेशल लिसनिंग टू अस राइट नाउ फ्रॉम गाना दैट्स पूनम दिनी मोहन. हे पूनम, हाउ आर यू माय ब्यूटीफुल सिस्टर. वो बोलते हैं वहां पे वो गाना से हमारा साथ दे रही है और वहाँ पे बारिश हो रही है. इनफैक्ट इट्स फ्लडिंग एट सम प्लेसेस देयर. आई जस्ट विश दैट एवरीवन इज सेफ देयर एंड हम बस दिल से यही प्रार्थना करते हैं कि ये दुनिया में कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है बस सब कुछ सब लोग जो हैं सेफ रहें. एंड पूनम, द नेक्स्ट वन गोज़ आउट टू यू माय ब्यूटीफुल एंड कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक. कितना अच्छा लगता है ना जानते हैं कि दूर होते हुए भी आप लोग हमेशा साथ देते हैं ऑल मॉरिशस जो मॉरिशस के बाहर है. एंड द नेक्स्ट वन गोज़ आउट फॉर अब्दुल जी एंड सहरा बानो जी. विशिंग बोथ ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून माय ब्यूटीफुल लेडी एंड जेंटलमैन. सो एज वेल मेरी जान कविता है गिनी मेरी जान. सो स्वीट ऑफ यू आप दो फ्रेंड से हैं और एक गाना सुनना पसंद करोगे ज़रूर आपके दोस्त रेखा पे प्रेमिला सबीना के लिए और हमारे लिए भी. एंड हाय मेरी जान, ओह आज तो सबकी जान बनी हूँ मैं. एंड एक गाना सुकून कर अच्छा लगता है आपको ऐसे वाले गाने. रेडियो मस्ती सुया बिहारी जो हैं कुंगुमा से साथ दे रही हैं और वो बोलते हैं अच्छे अच्छे गाने प्ले कर रहे हैं एंड शी इज़ रियली एन्जॉइंग इट. दैट्स सो स्वीट. सीता गीता बलोराम जी फ्रॉम शत बनारस, ये अगला गाना हमारी तरफ से आपके नाम. तो चलिए जी, बाकी जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स साथ दे रहे हैं I just wish that everyone is just enjoying this beautiful aur bahut hi pyare gaane jo lekar aaye hain aap logon ke liye. 5499124, here we go. Send me your dedications.
0: You're listening to Radio Masti.

0: म्यूजिक और 90s का तड़का इन योर वेरी ओन रेट्रो रिदम RM2
1: रेडियो मस्ती
2: RM2 रेडियो मस्ती

बहुत मुश्किल है अकेला लौट के घर को जाना, लौट के घर को जाना, मेरे दिल का कमरा खाली है। मेरे

0: म्यूजिक और 90s का तड़का इन योर वेरी ओन रेट्रो रिदम RM2
1: रेडियो मस्ती
0: रेडियो मस्ती।

0: सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक है जी हाँ दोस्तों, स्पेशली आप लोगों के लिए चलका चलका रे रिचा शर्मा, महालक्ष्मी आयर एंड वैशाली एंड शोमा की आवाजों में, खासकर आप लोगों के लिए ऑन रेडियो मस्ती। फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 1 PM।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती,
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5,
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4,
1: सेंटर
2: 99.4।
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार याचना के साथ। नमस्कार।
3: नमस्कार गिनिशा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। आज पारित होने से पहले राष्ट्रसभा में अप्रोप्रिएशन बिल तीसरी परत पर पेश किया जाएगा। इससे नए वित्तीय साल के लिए खर्च रकम पर मंजूरी मिल जाएगी और कई कदम भी अमल में लाए जाएंगे, जिनमें से कुछ का पालन कल से ही किया जाने लगेगा। आज सुबह विपक्ष नेता का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुबो को संबोधित था। उन्होंने जानना चाहा कि क्या पेंशन प्रणाली में सुधार के कदमों को लेकर समाज सुरक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच परामर्श हुआ या नहीं। मंत्री अशोक सुबो ने बताया कि परामर्श सत्र नहीं लगाए गए, लेकिन ऐसा सुधार अनिवार्य था और पिछले साल प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने ऐसे कदमों पर बातचीत की थी और कुछ ऐसे ही सुझाव प्रस्तावित भी किए थे। मलगासी बिजनेसमैन मामी हवातुमोंगा की जमानत पर रिहाई की नई मांग को लेकर कल बेल एंड रिमांड कोर्ट में सुनवाई हुई। ये अनुरोध उस समय सामने आया है जब पिछले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पहले दिए गए बेल एंड रिमांड कोर्ट के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इस बार मामी हवातुमोंगा के वकीलों का मुख्य तर्क ये है कि आरोपी अपनी पिछली वर्ष हुई गिरफ्तारी के बाद से 7 महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने अपनी जांच 3 महीने के भीतर पूरे करने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया। आयोग ने ये आश्वासन दिया कि फरवरी 2026 में अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान ये आश्वासन दिया गया। गौरतलब है कि मामी हवातुमोंगा पर मनी लॉन्ड्रिंग का अस्थायी आरोप है। विदेश में वेनेजुएला में भूकंप के 2 जबरदस्त झटकों के बाद मारे गए लोगों की संख्या 1,700 पार हो गई है। कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। मलबे तले लोगों को जीवित निकालने की आशा दिन ब दिन कम होती जा रही है। इस बीच वहां के निवासी सरकार से ज्यादा समर्थन की मांग कर रहे हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए राउंड ऑफ 32 में कई टीमें कमाल दिखा रही हैं। रविवार को जहां कनाडा ने 1-0 से साउथ अफ्रीका को हराया, वहीं कल ब्राजील और जापान की टीम आपस में टकराई। जापान अंतिम समय तक टिका रहा, लेकिन ब्राजील की टीम बाजी मार गई। स्कोर रहा ब्राजील 2-1। आज 2 मैच खेले जा चुके हैं, पैराग्वे जर्मनी और उसके बाद मोरक्को नेदरलैंड्स। दोनों मैचों में स्कोर रहा ड्रॉ 1-1। पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को और मोरक्को ने नेदरलैंड्स को खेल से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। अब आज मैच खेला जाएगा रात 9 बजे कोत द्वीवर और नॉर्वे के बीच। ये थी अब तक की खबर।

0: नहीं थोड़ी देर में शोक समाचार अठावन जैक जेन पिचन स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट पोर्ट लुइमे नंबर 58 जैक यूजेन पिचन स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट पोर्ट लुइमे 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री परबो हीरा जो पागा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके भाई रूपलाल गणेश ईरा के मकान नंबर 58 जैक यूजेन पिचन स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट पोर्ट वी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले सालियन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे 8:30 PM शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musty

0: Retro Rhythm.
1: कितना प्यारा सा गाना है, लो आ गई उनकी याद है लेकिन अब वो नहीं आए। ये थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, खासकर आप लोगों के लिए टेकन फ्रॉम द मूवी डोबडन, जो 1966 में रिलीज़ हुई थी। और ये गाना स्पेशली हम लेकर आए थे आपके लिए, ये प्रेमिला जी के लिए। हमारी प्यारी सी एक बुआ हैं जिनका नाम है प्रेमिला जी और वो रहती हैं क्यूपी, प्रेमिला राम कृष्ण जी। सो शी इज़ लिसनिंग टू अस एट द मोमेंट, तो आई रियली होप पुपू कि आपको ये दिल से अच्छा लगा ये खूबसूरत सा गाना। वैसे देखा जाए याद तो बहुत आती हैं लेकिन वो नहीं आ जाते हैं, लेकिन यादों के सहारे जब इंसान जीने लग जाते हैं तो जीने में ही आसानी हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि दिल छोटा नहीं करते हैं, क्योंकि ऑन ऑरेंज रेडियो मस्ती लेकर आते हैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे गिने चुने नगमे। शायद आपके दिल में भी कोई ऐसा गीत होगा जो किसी खास शख्स की याद दिलाता हो, कोई जो आस पास हो या सिर्फ यादों में बसा हो। आज के इस खूबसूरत से शो में, यानी कि आपका रेट्रो रिदम में, हम हर गीत या किसी ना किसी कहानी को जिंदा करने के लिए प्ले कर रहे हैं। हो सकता है कि आज की महफिल में आपको अपनी कहानी का कोई हिस्सा मिल जाए। कभी कभी रेडियो पर बजता हुआ एक पुराना गीत हमें सालों पीछे ले जाता है ना। माँ की आवाज, पापा की मुस्कुराहट, बचपन का घर, दोस्तों की महफिल, सब कुछ एक पल में आंखों के सामने आ जाता है। आज के इस खूबसूरत से पल में हम उन्हीं अनमोल लम्हों को फिर से जीने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ। तो बस तैयार हो जाइए हमारा साथ देने के लिए 2 बजे तक इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है रेट्रो रिदम। 1:11 हो चुके हैं। विशिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार और किनिशा का प्रणाम और स्वागत फिर से एक बार रेट्रो रिदम में ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती। 5499-1294 पर 5499-1294। जी हाँ, send me your dedications right now, right away.
2: RMT Radio Misty.

रेट्रो रिदम। देखा जाए जिंदगी में ये जो भी होता है, जब भी होता है, हमेशा पहली बार ही होता है। ये किशोरदा की आवाज में हमने पेश किया है, हाँ पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़ के, क्या हुआ उसके बाद ये सभी को पता है। वैसे दोस्तों वक्त की एक खूबसूरत बात है, ये गुजर जरूर जाता है लेकिन अपने साथ कुछ यादें छोड़ जाते हैं। और जब हम यादों को किसी पुराने गीत का सहारा मिलता है ना, तो दिल फिर से बच्चा बन जाता है। आज के इस खूबसूरत से शो में, इस खूबसूरत से पल में हम उसे बचपन और मासूमियत को ढूंढने के निकल जाते हैं। आज के इस खूबसूरत शो में हो सकता है कोई गीत आपको अपनी पहली मोहब्बत की याद दिला दे, हो सकता है किसी के बिछड़े हुए दोस्त की याद दिला दे, या हो सकता है आपकी आंखों में मुस्कुराहट के साथ एक आंसू भी ले आए। और यही तो है पुराने बॉलीवुड गीतों का जादू, जो दिल को छू कर गुजर जाते हैं और उसमें बस जाते हैं हमारी खूबसूरत यादें। जब जिंदगी थका देती है ना दोस्तों, यादें हमें संभाल लेती हैं। और जब यादों का साथ पुराने गीतों को मिल जाए तो सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। आज की शाम, आज की इस

0: अफ्टरनून और भी खूबसूरत हम बनाएंगे इन खूबसूरत नगमों के साथ। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए ये चेक करते हैं आपके प्यारे प्यारे डेडिकेशंस जो आपने बड़े प्यार से लिख के हमें भेजे हैं। एंड कोई ऐसा गाना हमने प्ले किया था जो किसी ने लिखा है कि यानी कि रागिनी जी ने बोला है कि आंखों में आंसू आ गए, पुराने याद आ गए। आई नो, तो यही तो एक्चुअली मैं बोल रही थी रागिनी जी की, कुछ गाने ऐसे होते हैं कि याद करते करते मुस्कुरा तो हम जाते हैं लेकिन आंखों में नमी आ ही जाते हैं। प्रोग्राम इज़ रॉकिंग इन, एक गाना हमारे लिए ज़रूर। तो चलिए, आई जस्ट वॉन्ट टू डेडिकेट इट आपके लिए हेमा जी। जब भी आप मैसेज भेजें प्लीज़ साइन योर मैसेज। वेल इट्स सो ट्रू, ट्रू है माय स्वीट मीटी गिनी प्रणाम। सभी लोग ठीक है मेरी जान। एंजॉय मिस आई एम जस्ट एंजॉइंग दिस मेस्मराइजिंग गाने। हम घर का काम कर रहे हैं एंड विशिंग यू एज वेल अ वंडरफुल आफ्टरनून एंड बो कुराज। बहुत ही टचिंग गाने आप प्ले कर रहे हो। इट्स सो ट्रू, याद तो आती है लेकिन वो नहीं आती। बिल्कुल जी, याद तो आ जाते हैं लेकिन वो नहीं आते, क्योंकि बहुत हार्ड होता है एक्सेप्ट करना कि कभी कभी जिनके साथ हमने पूरी ज़िंदगी जीने का सपना देखा है वो जब हमारे बगल में अब नहीं होते हैं, इस दुनिया से चले गए, तो बहुत ही हार्ड होता है। लेकिन कुछ जो मीठी मीठी प्यारे प्यारे सबसे बहुत ही बेस्ट यादें वो छोड़ के गए ना, उन्हीं यादों के सहारे आप जी सकते हैं। कविता जी, हाय फ्रॉम दुफ्रे, गाना हो जाए बिल्कुल आपके लिए, रेखा के लिए, प्रेमिला सबीना के लिए गीत ज़रूर प्ले करेंगे आप लोगों के नाम। नमस्ते जी, हे सुबह से हम साथ ही दे रहे हैं, अच्छी बात है। और अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके लिए माय डियर, यानी कि रीटा के लिए जो बड़े ही शिद्दत से हमारा साथ दे रही हो, फॉर समवन वेरी स्पेशल। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो चलिए, आई हैव गॉट द नेक्स्ट वन एज वेल फॉर दोस हु आर वर्किंग राइट नाउ। कुराज टू यू एंड एंजॉय द नेक्स्ट वन जी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप गुनगुनाएंगे, मुस्कुराएंगे हमारे साथ हरिहरन की आवाज में आपके लिए, टेकन फ्रॉम द मूवी घूंघट।
1: RN2 Radio Masti.

तो चलिए जी, खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में. ऑल राइट रेडियो मस्ती, फिलहाल के लिए आई जस्ट वांट टू डेडिकेट दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग जो हिंदुइज्म, हिंदी एंड हिंदुइज्म के स्टूडेंट है जो अभी एजुकेशनल टूर के लिए निकल चुके हैं एंड दे आर गोइंग बैक टू स्कूल फ्रॉम हरीश हाई स्कूल जो क्यू पेपर और रोजिल में है. सो अ बिग हाई गोस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो साथ दे रहे हैं. सो शाउट आउट फॉर यू गाइस एंड दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग गोज आउट टू यू स्पेशली फ्रॉम टीचर केशव रिसल की तरफ से. सो हियर वी गो, लेट्स ऑल एंजॉय इट एंड हिट इट ऑन आरएनटी रेडियो मस्ती.

0: रेडियो
1: पुराने गानों का मैजिक और 90s का तड़का इन योर वेरी ओन रेट्रो रिदम
0: RM2
1: रेडियो मस्ती
0: रेट्रो रिदम।
2: कैसा लगा आपको ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन से जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं RM2 रेडियो मस्ती। जी हाँ दोस्त, टाइम टू बीट चला जा रहा है, 1:37 हो चुके हैं। टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग, हम तो कहेंगे ड्राइव केयरफुली। और फिलहाल के लिए अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली फॉर यू शेनाज कोइराती एंड उनके लवली हस्बैंड जो है दे ऑन हॉलीडेज मॉरिशस में है एंड लिसनिंग टू मी एट द मोमेंट। गाड़ी चलाते चलाते अगर रेडियो मस्ती से आप जुड़े हुए हो ऑफकोर्स ये गाना आपके लिए शेनाज जी। सो मामा love you, thank you so much for calling and the next one goes out to you. तो चलिए जी, इस खूबसूरत सी सफर में आप लोग हमारा हम सफर बने हैं। वैसे आज अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं, हम कहेंगे कि ये याद रखें हमेशा कि हर गीत के साथ हम आपके साथ हैं। ये जो खूबसूरत सा पल है ना आपका, ये रेट्रो रिदम सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक महफिल है जहाँ यादें भी हैं, मोहब्बत भी है और जिंदगी के खूबसूरत एहसास भी। कुछ यादें वक्त के साथ धुंधली हो ही जाती है बल्कि और गहरी है। करने के लिए हम लेकर आए हैं ऐसे खूबसूरत गाने। जब भी आप सुनेंगे ऐसे खूबसूरत नगमे, ऑफ कोर्स याद तो आ ही जाएगी आपको वो सुनहरा पल। सो बिल्कुल उन पुराने गीतों की तरह जो हर बार सुनने पर एक नया एहसास दे जाते हैं, आज हम उन्हीं एहसासों को सुरों में पिरोकर आप तक पहुंचाएंगे। तो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड हमारे साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती। और अगला गाना जो है याले शाम के लिए जो सुरीनाम से साथ दे रहे हैं एंड शुभम के लिए जो 7 साल हो गए इस दुनिया से चल बसे लेकिन फिर भी हम उनको बहुत ही ज्यादा याद करते हैं। उनकी मामा

साधना और पापा मुकेश की तरफ से जो लाल माचीशिया के रहने वाले हैं। हेलो माय कुकू, ओहो गाना चला देंगे, जरूर कोशिश करेंगे आपके लिए। शशि जी ने भेजा है एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज। वाओ वाओ वाओ, यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज द वीकनेस पार्ट ऑफ दिस ऑडियंस एंड लिसनर्स। आप जोर से वही जगह ही अच्छा वही जगह पकड़ते हो। बिल्कुल जी, यू आर पल पाक के खिल, अच्छा पाक के लाल है हम। ओके थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली वी लाइक, इतना कि हम जो भी गाना पेश करते हैं आपके दिल को छू जाए। एंड I am communicating from my heart to yours, Gini. Thank you so much. This is my top favorite, Ghungate. Oh, you love that song, Shashi ji. Thank you so much. God bless you too and hats off, Shashi. Thank you. Respect and respect to you too. Agar aap log saath dete rahenge, to obviously achche-achche gaane jab bhi hum play karte honge, to wo directly aap logon ke liye hi hoga. Vishwani Duman, Vakwa se. Abhi main lunch kar rahi hun. So, bon appetit to you. Ek gaana ho jaye, bilkul. Aapki behen Indira ke liye Shardan, Saheli Neela, jo hain, Pratibha, Shubha aur Geeta, गजाडर के लिए जो साथ निभा रहे हैं। एंड चलिए जी, वी डू हैव द नेक्स्ट वन, जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो किशोर दा के बहुत ही बड़े फैन हैं।

0: Lolo Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentina Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: RM2 Radio Musti.
3: पुराने गानों का मैजिक और 90s का तड़का. In your very own retro rhythm. RM2
2: Radio Musti.
3: Radio Musti.

लेट एस पी बाला सुब्रमण्यम और अलका यज्ञ की आवाजों में खासकर आप लोगों के लिए सागर से गहरा है प्यार हमारा. बिल्कुल जी, सच अ लवली सॉन्ग टेकन फ्रॉम द मूवी मझधार जो 1994 में रिलीज हुई थी एंड प्लेइंग राइट नाउ स्पेशली फॉर यू ऑन आवर टू रेडियो मस्सी. रेट्रो रिदम जहाँ खींच के लेके जाते हैं उन वादियों में जहाँ पे आपके खूबसूरत यादों को आपने सजा के रखा है मेरे ये प्यारे प्यारे लवली लिसनर्स. जी हाँ, टाइम टू बीटा चला जा रहे हैं, 1:53 हो चुके हैं. तो चलिए जी, फिलहाल के लिए टाइम टू से गुड बाय. अभी आने वाली है थोड़ी देर बाद पर ही. सो ये अगला गाना जो हम लेकर आए हैं आपके लिए अनिता जी जोफी कॉम्प्लेक्स से साथ दे रही है. आई जस्ट वॉन्ट टू डेडिकेटेड फॉर यू एंड हाईलैंड से नवीन जी साथ दे रहे हैं. उनकी वाइफ उषा की तरफ से बोलते हैं, ड्राइव कर रही हैं. आई जस्ट वांट टू टेल हिम आई लव हिम सो मच एंड आई विश हिम अ सेफ ड्राइव. सो दैट्स गुड एंड आई होप कि आप सुन रहे हो. तो चलिए जी, ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली टू ऑल दोस्ट जो काम पे हैं. सो कुराज टू यू टू ऑल दोस्ट हु आर ड्राइविंग, ड्राइव केयरफुली. एंड स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे जगवा परिवार के लिए प्रिया त्रियुले की तरफ से. एंड हियर वी गो, आई जस्ट वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट वन फॉर यू माय डियर लव.

पीपल आउट देयर जो बड़े शिद्दत से रोज़ आ जाते हैं 12 से 2 हमारा साथ देने के लिए इन योर रेट्रो रिदम. आई डोंट नो मे बी आपको भी एवरग्रीन पुराने गाने अच्छे लगते हैं, तो अगर ऐसी बात है तो हमेशा साथ यूँ ही देते रहना. अपना ख्याल रखना जी, और फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनेशा टू से गुड बाय टू यू. एंड मौसम बहुत ही हसीन है, प्यार वाला मौसम है. क्या एक गाना हो जाए प्यार करने वालों के नाम? बिल्कुल जी, हियर वी गो.

0: चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 2 बज रहे हैं। यू सुनते समाचार याचना के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनी शाह, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। आज पारित होने से पहले राष्ट्रसभा में अप्रोप्रिएशन बिल तीसरी पढ़त पर पेश किया जा रहा है। इससे नए वित्तीय साल के लिए खर्च रकम पर मंजूरी मिल जाएगी और कई कदम भी अमल में लाए जाएंगे, जिनमें कुछ का पालन कल से ही किया जाने लगेगा। आज सुबह विपक्ष नेता का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुबह को संबोधित रहा। उन्होंने जानना चाहा कि क्या पेंशन प्रणाली में सुधार और बदलाव के कदमों को लेकर समाज सुरक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच परामर्श हुआ या नहीं। मंत्री अशोक सुबह ने बताया कि परामर्श सत्र नहीं लगाए गए, लेकिन ऐसे सुधार अनिवार्य हैं और पिछले साल प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने ऐसे कदमों पर बातचीत की थी और कुछ ऐसे ही सुझाव प्रस्तावित भी किए थे। कटनी की अवधि शुरू हो चुकी है और कई इलाकों में छोटे खेतिहर भी काम पर लग गए हैं। 6 महीने बाद अब दोबारा सुबह भोर में उठ जाना और खेत जाने के लिए लोग तैयार होने लगे। सेंट जूलियन डुतमाओ में कल कटनी शुरू हुई। इस साल इस इलाके में अच्छी बारिश के कारण फसल ज्यादा अच्छी होने का अनुमान लगाया गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 105 साल पूरे होने के अवसर पर मॉरिशस में चीन के दूतावास द्वारा एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कई महानुभाव उपस्थित रहे। चीन की राजदूत हुआंग शिफांग ने 1921 में पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक के उसके सफर का उल्लेख किया। उन्होंने मॉरिशस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने की चीन की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश में वेनेजुएला में भूकंप के 2 जबरदस्त झटकों के बारे में मारे गए लोगों की संख्या 1,700 पार हो गई है। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। मलबे तले लोगों को जीवित निकालने की आशा दिन ब दिन कम होती जा रही है। इस बीच वहां के निवासी सरकार से ज्यादा समर्थन की मांग कर रहे हैं। ये थे अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नंबर 58 जैक यूजेन पिचन स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट पोर्टली में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्रीपर बोहिरा जो पागा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी सपहर 3 बजे उनके भाई रूपलाल गणेश यहाँ के मकान नंबर 58 जैक यूजेन पिचन स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट पोर्टली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले सालीन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। रूट थ्री बोन नंबर 4 वाकवा में तिरसठ साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री अनिराव अर्जुन बालू जो अनिराव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके मकान रूट थ्री बोन नंबर 4 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मैल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 8:09 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: More music in the mix.
1: आज आजादी है.
2: बॉम्बे टॉकीज़ रेडियो मस्ती.
3: रेडियो मस्ती.

So, well, friends, celebration वाला ये गाना अभी कुछ taken from the film Welcome to the Jungle, जो कर रही है अच्छी खासी कमाई. वैसे तो हमने जैसे बताया था that फिल्मों की जो fate है वो decide होती है every Friday, और अभी के लिए तो it's doing a good business. Warm welcome आप सभी का, 2:11 Tuesday afternoon 30th of June. स्वागत करते हैं आपका on the waves of RM2 Radio मस्ती. लेकर आए हैं कुछ latest tracks आपके लिए. So, साथ दीजिए आप भी आपके messages, आपके dedications 5499-1294 till 4 p.m. right here on RM2 Radio Masti. Time for your Bombay Talkies.

0: Lolo Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentina Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही है? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
3: RM2 Radio Musti.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: So, well, that's one more beautiful song from the film Maa Behen. ODD पर रिलीज हुई ये फिल्म जिसमें नजर आई तृप्ति डामरी एंड उनका साथ देती हुई द वे गॉर्जियस माधुरी दीक्षित. कम बैक किया है ऑन ODD विद दिस फिल्म जहां पर उनकी एक्टिंग की हो रही है काफी ज्यादा तारीफ. तो चलिए ODD फिल्म और ये गाना आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं तृप्ति डामरी एंड माधुरी दीक्षित की बाखूबी निभाया हुआ ये रोल जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया जहां पर नजर आ रही एज माँ एंड बेटी. अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा अभी तक ऑन ODD देखिए जरूर और बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी. स्पेशली इफ यू आर अ माधुरी दीक्षित फैन डू वॉच इट एंड फ्रॉम दैट फिल्म वी हैव दिस गाना आप सभी के लिए.

आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं, अब इसकी जरूरत नहीं। हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799 3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।

0: Radio Musti.
1: Bombay Talkies.
2: Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: सो वेल फ्रेंड्स, दैट्स योर रेडियो मस्ती, जहां पर आपके लिए हम तो एवरी डे इसे बनाते हैं स्पेशल एंड मस्ती भरा, बिकॉज मंडे हो या संडे, आपके मूड को सेट रखना बस यही तो हमारी कोशिश रहती है. सो आई डू होप दैट आज का ये ट्यूसडे, इट्स अ नाइस ट्यूसडे फॉर एवरीवन. एंड वेल, आज तो है इस महीने का, जून महीने का आखिरी दिन, सो वी हैव टू मेक इट स्पेशल. बस आपके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज. आप तो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं हमारे स्वीट लिसनर्स, जो 24/7 हमारा साथ देते हैं ऑन 5499129. तो बस तहे दिल से आपको कहेंगे थैंक यू, ऐसे ही आपका प्यार हम तक आप पहुंचाते रहिए. एंड इट्स टी टाइम. आई नो यहाँ पर चाय तो हो गई है एकदम तैयार, एंड आई कैन सी कुछ वंडरफुल पिक्चर्स जो आप यहाँ पर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. हम तो स्टूडियो में हैं लेकिन आप एंजॉय कर रहे हैं, तो बस हम भी एंजॉय कर ही रहे हैं आपके साथ. सो थैंक यू सो मच एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. अभी के लिए यलेश हमारा साथ दे रहे हैं, आप एंजॉयिंग योर टी टाइम. एंड सभी सुरिनाम से शाम परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल ट्यूसडे. सो थैंक यू सो मच यलेश. अगला गाना होगा आपके नाम सभी शाम परिवार के लिए. एंड वेल कहते हैं हेलो परी, कैसी हो? आई एम एकदम फाइन, आप बताएं आप कैसी हैं? उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक ठाक ऑन योर साइड. हमारी प्यारी सी रोशनी जो इस वक्त हमारा साथ दे रही है. सो अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए, और ये जो कारवां है ये चलने वाला है नेक्स्ट आवर भी. सो साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 पीएम. विल श्योरली प्ले सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए रोशनी. सो साथ देते रहिए आप एंड एंजॉय योर आफ्टरनून. वी ऑल्सो हैव डेविसन लाल माटी से हमारा साथ दे रहे हैं आप. सो हैव अ वंडरफुल टाइम. कुछ प्यारे गाने यहाँ पर शामिल हो रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती, एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स. डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के लिए सुपर रोमांटिक गाना अरिजीत सिंह अरमान खान की आवाजें फ्रॉम द फिल्म धुरंधर. एंजॉय दिस वन.

0: दोपहर के 3 बजे हैं देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना आपको नमस्कार
1: नमस्कार परी सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार राष्ट्रसभा के कार्य आज जारी रखे जा रहे हैं आज पारित होने से पहले राष्ट्रसभा में अप्रोप्रिएशन बिल तीसरी पढ़त पर पेश किया जा रहा है इससे नए वित्तीय साल के लिए खर्च रकम पर मंजूरी मिल जाएगी और कई कदम भी अमल में लाए जाएंगे जिनमें से कुछ का पालन कल से ही किया जाना लगेगा आज सुबह विपक्ष नेता का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो को संबोधित था उन्होंने जानना चाहा कि क्या पेंशन प्रणाली में सुधार और बदलाव के कदमों को लेकर समाज सुरक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच परामर्श हुआ या नहीं मंत्री अशोक सुभो ने बताया कि परामर्श सत्र नहीं लगाए गए लेकिन ऐसा सुधार और ऐसे बदलाव अनिवार्य हैं और पिछले साल प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने ऐसे कदमों पर बातचीत की थी और कुछ ऐसे ही सुझाव प्रस्तावित भी किए थे गन्ने की कटनी की अवधि शुरू हो चुकी है और कई इलाकों में छोटे खेतिहर भी काम पर लग गए हैं 6 महीने बाद अब दोबारा सुबह भोर में उठ जाना खेत जाने के लिए तैयार होना सेंट जूलियन डुटमो में कल कटनी शुरू हुई इस साल इस इलाके में अच्छी बारिश के कारण गन्ने की फसल ज़्यादा अच्छी होने का अनुमान लगाया जा रहा है मलगासी बिजनेसमैन मामी हवातुमोंगा की जमानत पर रिहाई की नई मांग को लेकर कल बेल एंड रिमांड कोर्ट में सुनवाई हुई ये अनुरोध उस समय सामने आया जब पिछले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पहले दिए गए बेल एंड रिमांड कोर्ट के उस निर्णय को बरकरार रखा जिसमें उसे जमानत देने से इनकार किया गया था इस बार मामी हवातुमोंगा के वकीलों का मुख्य तर्क ये है कि आरोपी अपनी पिछले वर्ष हुई गिरफ्तारी के बाद से 7 महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने अपनी जांच 3 महीने के भीतर पूरे करने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया है वैश्विक स्तर पर फीफा वर्ल्ड कप के लिए राउंड ऑफ 32 में कई टीमें कमाल दिखा रही हैं रविवार को जहां कनाडा ने 1-0 से साउथ अफ्रीका को हराया वहीं कल ब्राजील और जापान की टीम आपस में टकराई जापान अंतिम समय तक टिका रहा लेकिन ब्राजील की टीम बाजी मार गई स्कोर ब्राजील 2-1 आज 2 मैच खेले जा चुके हैं पैराग्वे जर्मनी और उसके बाद मोरक्को नेदरलैंड्स दोनों मैचों में स्कोर रहा ड्रो 1-1 पर पेनल्टी शूटआउट पर पैराग्वे ने जर्मनी को और मोरक्को ने नेदरलैंड्स को खेल से बाहर जाने का रास्ता दिखाया अब आज मैच होगा रात 9 बजे कोत द्वीवर और नॉर्वे के बीच इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए आपके ध्यान के लिए धन्यवाद आज्ञा दीजिए नमस्कार
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: More music in the mix.
4: Aaj Azadi hai.
5: Bombay Talkies.
6: Radio Musti.
7: Radio Musti.

RM2 रेडियो मस्ती। So well, ladies and gentlemen, आपका वार्म वेलकम। 3:12 हो रहे हैं, मैं हूं परी आपके साथ। इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज, बी टाउन की अपडेट्स एंड सम लेटेस्ट सॉन्ग्स। आई डू होप यू आर एंजॉयिंग योर ट्यूसडे आफ्टरनून। चलिए अभी के लिए मूड को सेट करने के लिए, वी हैव दिस वन, अ स्पेशल स्पेशल डेडिकेशन आप सभी के लिए। ट्यूसडे आफ्टरनून है, साथ दे रहे हैं आप ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस इन दिस आवर 5499-1294 पर।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well friends, it's 3:54 and it's time for Pari to say goodbye. लेकिन goodbye कहने से पहले आपके messages, आपके dedications. Well, यहाँ पर हमारे साथ connected हैं और enjoying the songs. हमारी प्यारी सी गायत्री जी. Thank you गायत्री जी, आप साथ दे रही हैं और thank you आपने इतने प्यार से ये sweet message हम तक पहुँचाया. ऋषभ विदेशी हमारा साथ दे रहे हैं और कहते हैं गाना dedicate करना चाहता हूँ for all RM2 listeners and my moody girlfriend who's going to celebrate her birthday on 2nd of July. So चलिए उनके लिए भी प्यार and special wishes. Birthday month शुरू होने वाला है, so I'm sure she's going to be a happy, happy girl. So, gaana hoga unke naam coming from Rishi Videsi and Lalita Jeetan saath de rahi hain, full volume par enjoy kar rahi hain gaano ko. Dedicating gaana apne sabhi colleagues, apne students ke liye and sending loads of love sabhi ke naam. And yahan par Kumar Dibichan aap bhi hamara saath de rahi hain apne papa Sham Dibichan ke naam ek pyara sa gaana aur saath hi yahan par dedicate

जुड़ गए हैं. सो विशिंग यू अ वंडरफुल टाइम RM2 रेडियो मस्ती के साथ. एंड नेक्स्ट ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. और आ रही है रिया लेकर कुछ और प्यारे ट्रैक्स आपके लिए इन योर रफ्तार वाइब्स. सो उनका साथ दीजिए एंड हैव अ वंडरफुल ट्यूसडे आफ्टरनून रेडियो मस्ती के साथ.

0: परत पर पेश किया जाएगा। इससे नए वित्तीय साल के लिए खर्च रकम पर मंजूरी मिल जाएगी और कई कदम भी अमल में लाए जाएंगे, जिनमें से कुछ का पालन कल से ही किया जाने लगेगा। आज सुबह विपक्ष नेता का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभों को संबोधित था। उन्होंने जानना चाहा कि क्या पेंशन प्रणाली में सुधार और बदलाव के कदमों को लेकर समाज सुरक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच परामर्श हुआ है या नहीं। मंत्री अशोक सुभों ने बताया कि परामर्श सत्र नहीं लगाए गए, लेकिन ऐसा सुधार अनिवार्य हैं और पिछले साल प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने ऐसे कदमों पर बातचीत की और कुछ ऐसे ही सुझाव प्रस्तावित भी किए थे। परामर्शदाता कंपनी क्रोल की रिपोर्ट में सामने आए कुछ तथ्यों को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन और पुलिस को सौंपा जाएगा। इस कंपनी को एयर मॉरिशस के विमानों की खरीद और बिक्री से जुड़े मामलों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राष्ट्रीय विमानन कंपनी के पूर्व प्रशासक सत्य अब्दुल्ला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये जानकारी मंगलवार को राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान सामने आई। देश के पूर्व में पहली बार ऐसी योजना कायम की जाएगी। बजट 2026-2027 में सेंट्रो डे फ्लैक के डॉक्टर ब्रूनो चोंग अस्पताल को एक रेजिडेंशियल रिहैबिलिटेशन सेंटर में बदला जाएगा। इसका मकसद है ड्रग्स के शिकार लोगों को सहारा देना। इस पर योजना को अमल में लाने के लिए संबद्ध साझेदारों के साथ बातचीत जारी है। इस बीच देश के इस हिस्से के ड्रग्स के शिकार लोगों की मदद के लिए एडिक्टोलॉजी विभाग की सेवाएं वहीं पर डॉक्टर ब्रूनो चोंग स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हैं। विदेशी समाचारों में वेनेजुएला में भूकंप के दो जबरदस्त झटकों के बाद मारे गए लोगों की संख्या 1,700 पार हो गई है। कई लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। मलबे तले लोगों को जीवित निकालने की आशा दिन ब दिन कम होती जा रही है। इस बीच वहां के निवासी सरकार से ज्यादा समर्थन की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: You're listening to RM2 a Radio Masti.
2: Raftar Vibes. Filmy Rides.
3: RM2.

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम याचना के साथ सुनते हैं। नमस्कार आपको याचना।
1: नमस्कार रिया, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। आज पारित होने से पहले राष्ट्रसभा में अप्रोप्रिएशन बिल तीसरी

0: जी नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन RM2 रेडियो मस्ती। दिस इज मी आपके साथ आपके रिया। और अभी शुरू हो चुका है आपका अपना ड्राइव टाइम साथी रफ्तार वाइब्स यहीं पर हमारे साथ। और यहाँ पर अगले कुछ घंटों तक ट्रैफिक का चाहे धीरे चले या तेज, हमारी म्यूजिक बिल्कुल फुल स्पीड में चलेगी। अभी अभी हमने ये गाना चलाया आपके नाम इश्क कमीना, और लगता है गाने की एनर्जी भी हवा में है। ट्यूसडे है, मतलब हफ्ता भी पूरी रफ्तार पकड़ रहा है। कुछ लोग ऑफिस से घर की तरफ निकल चुके हैं, कुछ अभी भी डेस्क पर काम में लगे हैं, और कुछ तो रोड पर ट्रैफिक के साथ पेशेंस का टेस्ट दे रहे होंगे। जहां भी हैं आप, स्टीयरिंग व्हील पकड़ी है, बस में बैठे हैं, या ऑफिस की लास्ट फाइल्स खत्म कर रहे हैं, रेडियो मस्ती को थोड़ा सा और लाउड कर दीजिए। आज का सफर गाने भी करेंगे और बातें भी। जी हाँ, वी हैव गॉट ब्यूटीफुल ट्रैक्स। यहाँ पर एक एक गाना हम चुन कर लाते हैं आपके नाम, ताकि आप भी खुश, हम भी खुश, सभी खुश। सो लेट्स हियर द नेक्स्ट गाना, और आपकी डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2।

हो तैयार हो जाइए, सभी रफ्तार वाइब्स का एनर्जी मीटर अब और भी हाई होने वाला है। और इस बार सिर्फ गाना ही नहीं, जीतने का भी मौका है। अगर आप ढूंढ रही है किसी खास इंसान के लिए परफेक्ट गिफ्ट, तो लेट मी टेल यू दैट मिस्टिक वर्ल्ड ऑफ टाइम लेकर आया है ब्यूटीफुल गिफ्ट कार्ड्स, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी, ऑथेंटिक क्रिस्टल सभी अवेलेबल है वहाँ पर, और स्टनिंग होम डेकोर एज वेल। राज रेडियो मस्ती के साथ आप जीत भी सकते हैं एक गिफ्ट वाउचर। जी हाँ, 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर ऑफर्ड टू यू बाय mysticworld.mu। बस एक बॉलीवुड सवाल हम लेकर आए हैं आपके नाम, और सही जवाब आपको बना सकता है विनर। आज का सवाल बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। आपने आम शो की फिल्म फ्री इडियट्स जरूर देखी है, तो हमें बताएं कि फिल्म फ्री इडियट्स में रैंचो का असली नाम क्या था। फिल्म फ्री इडियट्स में रांचू का असली नाम

0: क्या था? ए फरहान कुरैशी, बी राजू रस्तोगी, सी फनसुख वांगरू। अगर आपको सही जवाब पता है तो पूरे नाम और पूरे पते के साथ है सही जवाब भेजिए 54991294। और जो लोग अक्सर जीते रहते हैं आप दूसरों को भी मौका दीजिए टू पार्टिसिपेट एंड टू विन। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू।
1: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चिल करो, दिल से बॉलीवुड रेडियो मस्ती।

0: और अभी टाइम हो चला है अभी जो हमने गेम खेला था इसकी विनर को अनाउंस करने का। बहुत सारे मैसेजेस आए हमें, लेकिन सबसे पहला नहीं बट जहाँ पर हमने लकी ड्रॉ किया है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस में आपने बहुत सारे सही जवाब दिए, एक दो ने गलत जवाब दिए, बट इतने सारे सही जवाबों में हम फंस गए थे, इसलिए लकी ड्रॉ तो करना ही पड़ा। और लकी ड्रॉ के बाद हमें मिल गया है हमारा लकी विनर। बट सबसे पहले हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। हमने पूछा था दैट फ्री फिल्म फ्री इडियट्स में रैंचो का असली नाम क्या है, और सही जवाब है फंसक वैंग्रो। और इस राउंड के लकी विनर, जी हाँ, अभी अभी जो हमने गेम खेला था इसके लकी विनर है आप, है याचना बुदू, आप है गिबी स्पाइसी, सो कंग्रेचुलेशंस आपको, आपने सही जवाब दिया है और इसी के चलते आपको मिल रहा है 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय mysticworld.mu। लेट मी टेल यू दैट ये वाउचर आप तक बाय पोस्ट पहुंचा दिया जाएगा, सो फिकर करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी टीम आपसे जल्द ही कॉन्टैक्ट करेगी एंड यू गेट इट बाय पोस्ट। और अगर इस बार आपका नाम नहीं आया, हमारे बाकी लिसनर्स से हम बात करेंगे, अगर आपका नाम नहीं आया है कोई बात नहीं, टेंशन आप बिल्कुल ना ली, क्योंकि बारी आपकी ज़रूर आएगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि वी हैव गॉट लोड्स ऑफ गेम, और हमेशा रोज़ आपके साथ एक दो गेम तो हम ज़रूर खेलते ही है, तो बारी आपकी ज़रूर आएगी नेक्स्ट टाइम, तो स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती और सरप्राइजेज और गेम्स के लिए। सो राइट नाउ चलिए सुनते हैं नेक्स्ट गाना एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू यू याचना।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: घड़ी मिलाते चलिए 4:23 और अभी स्टूडियो में वी हैव अरविंद जो हमें बताएंगे कि आजकल स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हो रहा है. हेलो गुड आफ्टरनून आपको अरविंद.
4: गुड आफ्टरनून आपको. गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स. स्टार्टिंग विद द वर्ल्ड कप जहां से आज सभी लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जर्मनी और नेदरलैंड्स कैसे हार गए. जर्मनी ये तो सरप्राइज है ही लेकिन नेदरलैंड्स के लिए मोरक्को के खिलाफ मैच था इसीलिए इट्स नॉट ए बिग सरप्राइज. और जर्मनी ने भी जो चेहरा दिखाया था इक्वाडो के खिलाफ वहां से लग रहा था कि ये टीम ज़्यादा आगे नहीं जाएगी तो पराग्वे ने जर्मनी को एलिमिनेट किया. मोरक्को ने नेदरलैंड्स को और ब्राज़ील ने जापान को. ब्राज़ील अगले राउंड में आज भी काफ़ी मैच खेले जाएंगे. स्टार्टिंग विद आइवरी कोस्ट वर्सेस नॉर्वे ये मैच 9 बजे खेला जाएगा. सो आइवरी कोस्ट अफ्रीका से हैं. अफ्रीकी टीम जो क्वालिफाई हुई पहली बार के लिए फॉर द नॉकआउट राउंड उसके सामने है नॉर्वे. नॉर्वे जो अपने लीथल अटैक पर भरोसा करेगा खासतौर पर अर्लिंग अलॉन जिसको पिछले मैच में आराम के लिए छोड़ा गया था इसीलिए खूब फ्रेश होकर आ रहे हैं. नॉर्वे के 10 खिलाड़ियों को आराम पे रखा गया था अगेंस्ट फ्रांस क्योंकि नॉर्वे ने 2 मैच जीता था और दे क्वालिफाइड ऑलरेडी. आइवरी कोस्ट का डिफेंस जो है बहुत ही मजबूत और नॉर्वे का अटैक लीथल. सो जैसे कहते हैं कि लोहा लोहे को काटेगा. फ्रांस विल बी अगेंस्ट स्वीडन. यूरोप की 2 टीमें आमने सामने और ये मैच 11 बजे आज खेला जाएगा. 1 बजे फ्रांस वर्सेस स्वीडन. फ्रांस की टीम अभी तक 100 फुट 3 मैचों में गोल पे गोल स्कोर करते आ रहे हैं. द लेटेस्ट वन डेम्बेले का हैट्रिक रहा था नॉर्वे के खिलाफ. स्वीडन जैसे तैसे क्वालिफाई हो पाई थी बेस्ट 3rd टीम बनकर. फ्रांस फेवरेट है इस मैच में लेकिन स्वीडन की टीम जिसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं और फ्रांस में खेलते हैं यूरोप में खेलते हैं उनको पता है फ्रांस की टीम को कैसे रोकना होगा. तो फ्रांस स्वीडन ये आज का मैच. इसके बाद मेक्सिको इक्वाडो ये सुबह होगा 5 बजे. मेक्सिको बिग फेवरेट इस मैच के लिए. मेक्सिको वो मात्र टीम है जो अभी तक 1 गोल कंसीड नहीं किया है 3 मैचों में 6 गोल स्कोर करके दिया है. इक्वाडो की टीम शुरुआत में लड़खड़ा रहे थे लेकिन फाइनली दे डिफीटेड जर्मनी और क्वालिफाई हो पाए. सो इक्वाडो में वो जो आत्मविश्वास है कॉन्फिडेंस वापस आया है मेक्सिको अपने फैंस के सामने ये बहुत काम आता है. इंग्लैंड कल के लिए मैच है इंग्लैंड के लिए. दैट विल बी 8 बजे. हाँ कल काफ़ी 8 बजे रात्रि के इंग्लैंड अगेंस्ट कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. और बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा कल रात्रि के 12 बजे. तो ये आज और कल के मैच बहुत कुछ होगा खासतौर पर जब हम देख रहे हैं कि कुछ रिजल्ट अब अच्छे नहीं आ रहे हैं कुछ टीमों के लिए. सो आइवरी कोस्ट नॉर्वे फ्रांस स्वीडन ये आज के मैच हैं. कुछ अन्य खबरें जर्मनी की टीम आउट और जर्मनी के फैंस उनको एक नया मैनेजर चाहिए और प्रोस्पेक्ट ऑफ क्लॉप लूम्स. जर्मनी की टीम जो जर्मन टीवी में काम कर रहा था जे फुटबॉल पंडित उसने बताया कि जो गोल स्कोर किया ताने उसको देना चाहिए था तो अब जो नहीं होना था हो गया. जर्मनी के साथ एक नागल्समैन 38-year-old फॉर्मर बायर्न म्यूनिख बॉस वो कह रहा है कि वो नहीं जाएगा लेकिन आई एम नॉट समवन हु रन्स अवे. लेकिन जर्मन फैंस जानते हैं कि नागल्समैन सिंपली कैन नॉट प्रोवाइड दैट एट दिस मोमेंट. सो यर्गन क्लॉप इन द वेटिंग ऐसा कहा जा रहा है. पराग्वे के खिलाड़ी हीरो बन गए आसान

0: नहीं है, और इसमें ऑर्लैंडो गिल उसका रिमार्केबल परफॉर्मेंस गोलकीपर के रूप में ही बिकेम पैराग्वेज पेनाल्टी शूटआउट हीरो जर्मनी के खिलाफ। 6'6" गोलकीपर, 2 स्पॉट किक रोक पाया और उसके उसकी टीम को वो आगे ले पाया। सो गुड गोइंग। आज क्या होगा ये बताएंगे। टेनिस में भी काफ़ी मैच खेले जा रहे हैं फॉर दी विंबलडन ओपन, और आज के स्कोर जो है लेट मी चेक, स्वातिक टाउनसन ये मैच अभी नहीं हुआ है। फिर आज ही ब्लॉक्स विल बी प्लेइंग अगेंस्ट विरेज, विलियम्स अगेंस्ट जॉइंट मैच अभी फ्रिट्स और लाजोविच के बीच, रिबाकिना खेलेगी बोआसों के खिलाफ, वॉरिंका अगेंस्ट बेरेटिनी, अनिसिमोवा ने जो चेस्का को हराया 6-3, 6-2, और अभी मैच है वेर्टिनेन बेन शल्टल के बीच, फर्स्ट सेट में वेर्टिनेन की जीत। वितोनिला भी आज मैदान में उतरेगी अगेंस्ट स्निगू, और कोबोली अगेंस्ट नावन ये आज के मैच है। वी आर प्लेइंग दी राउंड ऑफ 128 क्रिकेट में अभी इन वेटिंग फॉर द फर्स्ट सेमीफाइनल। आज ऑस्ट्रेलिया वीमेन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वीमेन, ये T20 वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को हराकर एलिमिनेट किया, तो ये मैच आज खेला जाएगा। और ये जिस सुबह आप लोगों को बता रहे थे कि अटलांटा ओलंपिक्स में क्रिकेट होगा और उसमें भारतीय टीम को शामिल किया गया है, द लेडी टीम, और अगर बेस्ट एशिया रैंकिंग में भारतीय टीम आई, पुरुष टीम, दे विल ऑल्सो क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। सो दीज आर द लेटेस्ट। भूलिएगा नहीं आज के मैच, आपको कल सुबह रिजल्ट देंगे, एंड डोंट फॉरगेट द स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन कल सुबह 8:30।
1: थैंक यू सो मच अरविंद।
0: वेलकम।
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: Tune.
1: Traffic update.
0: वेल, रफ्तार वाइब्स पर म्यूजिक तो नॉनस्टॉप है, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचे। अगर आप इस समय या रोड पर हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत काम होगा। चलिए बिना देरी किए चलते हैं सीधा हमारे ट्रैफिक अपडेट की तरफ। हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं पुलिस फोर्स के पीसी सुकाय, जो देंगे हमें ताज़ा ट्रैफिक की जानकारी। नमस्ते सुकाय जी, रेडियो मसी पर आपका स्वागत है। बताइए हमें कि इस समय या मॉरिशस की सड़कों का क्या हाल है। हेलो
2: Hello, bon après-midi Ria et bon après-midi à tous les auditeurs. Alors, au niveau de la circulation et l'état du trafic routier pour cette fin d'après-midi, pas de problème à signaler sur nos routes. Pas d'accident ou obstruction sur les axes principaux qui gênent vraiment le flot du trafic. Et à l'heure actuelle qui me repose avec vous, c'est la sortie de Benbiro et un bon nombre de véhicules qui quittent la capitale et ça peut créer un ralentissement à la sortie sud à la hauteur du rond-point de Codan et à la sortie nord à la hauteur du rond-point de Rochebois et Richter vers le nord. Ensuite, nous verrons un temps d'arrêt à la hauteur du rond-point de Réduit et Highlands vers le sud, mais le trafic reprend le flot après le pont de Wooten. Sinon, dans d'autres secteurs de l'île, pour le moment, ça roule continuellement. Voilà un peu au niveau de la circulation et l'état du trafic routier pour cette fin d'après-midi. Moi, je souhaite surtout bonne route, bonne rentrée et surtout, soyez toujours prudents, évitez l'alcool au volant, respectez les limitations de vitesse. La police pousse sur le terrain pour sévir ceux qui pas respecter la loi. Sur ce, monsieur Zotou, bonne route. Merci de votre écoute et à très bientôt pour d'autres infos.
0: बहुत बहुत धन्यवाद पीसी सुका ये जरूरी जानकारी के लिए। एंड यस दोस्तों, अपडेट है तो आपने सुन ही लिया है, तो अपना रूट उसी हिसाब से प्लान कीजिए। सीट बेल्ट जरूर लगाइए, स्पीड लिमिट का ध्यान रखिए, मोबाइल से दूर रहिए और सुरक्षित घर पहुंचिए। अब चलिए ट्रैफिक की टेंशन को थोड़ा हल्का करते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गाना, जबरदस्त गाना हो रहा है यहाँ पर रफ्तार वाइब्स में, सिर्फ रेडियो मस्ती पर।
1: RM2 Radio Musti.

प्यार का एहसास हो या किसी की यादों का हल्का सा असर, कुछ गाने बस दिल को छू जाते हैं और ऐसा ही एक खूबसूरत गाना था हे शोना। एंड इसी के साथ हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। स्वागत है आप सभी का इन द सेकंड नंबर ऑफ रफ्तार वाइब्स रिया के साथ। सफ़र अब फिर से शुरू हुआ है, इसे हम कंटिन्यू नहीं क्योंकि क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक अलग सा सफ़र शुरू कर रहे हैं। अभी हम चलाएंगे बस रोमांटिक गाने आपके नाम, क्योंकि ये मौसम भी कुछ ऐसा ही है तो इसलिए हम खास चुनकर लाए हैं बहुत ही खूबसूरत मोस्टली रोमांटिक गाने आप सभी के नाम। तो ऐसे ही आप कनेक्टेड रहिए एंड यस

0: अगर आप घर पहुंच गए, अच्छी बात है, और अगर अभी तक नहीं, ऑफिस की भाग दौड़ में अभी तक लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ ये पीछे छूट ही जाएगा। सो फिकर करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी आप गानों का सफ़र एंजॉय करते रहिए और हमारे साथ हम सफ़र बनी इस म्यूजिकल सफ़र में। वी हैव द बेस्ट ट्रैक्स, क्योंकि आप हमारे साथ कनेक्टेड है, इसलिए अच्छे लोगों के लिए अच्छा अच्छा गाना हमेशा। सो यस, वी हैव गॉट द नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेटेड टू ऑल आवर लवली लिसनर्स जो हमारे साथ कनेक्टेड है, एंड आपके मैसेजेस डेडिकेशंस ऑन 5499-1294।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2।

वेल, हर इंसान के दिल में एक प्लेलिस्ट तो जरूर होती है। कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी मुलाकात की याद होते हैं, किसी पहली मुस्कान की कहानी होते हैं, या फिर किसी अपने के साथ गुजारे हुए खूबसूरत पलों की निशानी। अगर आज कोई का गाना आपको किसी खास इंसान की याद दिलाता है तो दिल ही दिल में उनके नाम एक मुस्कान ज़रूर भेजे। कभी कभी बिना शब्दों के भी दिल की बात पहुंच ही जाती है। और यहाँ पर तो हम बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक ट्रैक्स लेकर ही आए हैं। आई एम श्योर कि आपको किसी न किसी की याद तो ज़रूर आ ही जाएगी। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं मैसेजेस की ओर। यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस, वी हैव ललिता जिक्तन जी जो अभी जॉगिंग कर रही है और साथ ही साथ रेडियो मस्ती के खूबसूरत गाने एंजॉय कर रही है। आपकी कलीग टीचर्स के नाम है मीटीना, दिशा, दिशी, रवा, प्रीति, राहुल, रवि, सोनिया, शीमा, पिंकी, जो पोर्टलिस्ट काम करते हैं, सभी के नाम आप गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। एंड वी हैव रेबेका, रेबेका हमारे साथ जुड़ी हुई है और अपने पति अर्शद के नाम नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट करना चाहती है। यलेश शाम, कैसे हैं आप यलेश? गुड आफ्टरनून आपको। एंड नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम और आपके परिवार के नाम। वैसे आपने कल हो ना हो मूवी का एक गाना रिक्वेस्ट किया है, अगर हो सके तो हम ज़रूर चलाएंगे आपके परिवार के नाम और आपके नाम एज वेल। ऋषि देसी हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं। एंड आई एम टू रेडियो लिसनर्स के नाम नेक्स्ट ट्रैक आप डेडिकेट करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो आपकी मूडी गर्लफ्रेंड के नाम जिनका बर्थडे है ऑन द 2nd of July, अ ब्यूटीफुल ट्रैक उनके लिए। ऑलराइट, हम जरूर डेडिकेट करेंगे एक खूबसूरत सा गाना, एक रोमांटिक गाना उनके नाम। एंड आपके नाम भी एज वेल ऋषि, अपने गर्लफ्रेंड के साथ अगर आप हैं तो हैव अ गुड टाइम, एंड अगर ड्राइव कर रखे हैं तो हैव अ सेफ ड्राइव बैक होम। यहाँ पर ऑल्सो हमारे साथ कनेक्टेड है कमांडा बिचवन जी, अभी खाना बना रही है और गाने आप एंजॉय कर रहे हैं।

0: राइट, तो बहुत सारा प्यार गुजार टू पापा श्याम देवीचंद जो है प्यारे बेया से, सो उनके नाम भी नेक्स्ट ट्रैक जाता है. वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल रोमांटिक वन गुज आउट टू ऑल आवर लवली लिसनर्स.
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: आरएम2.

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Well, फैशन सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं, फैशन का मतलब है अपनी पहचान को प्यार से दिखाना। और आज का अलका ही फैशन टिप भी इसी बात पर है। कभी कभी हम सोचते हैं कि स्टाइलिश दिखने के लिए बहुत ही महंगा आउटफिट जरूरी है, लेकिन असली बात है बैलेंस। अगर आप बोल्ड प्रिंट पहन रही है तो एक्सेसरीज को सिंपल रखिए, और अगर आपका आउटफिट प्लेन है तो एक खूबसूरत नेकलेस, वॉच या एलिगेंट ईयरिंग्स पूरे लुक को

0: एक नया अंदाज दे सकता है। शाम के लिए पेस्टल शेड्स दी कलर्स या क्लासिक ब्लैक हमेशा ग्रेसफुल लगते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जो भी पहनिए उसे कॉन्फिडेंस के साथ पहनिए, क्योंकि सबसे खूबसूरत चीज़ किसी भी आउटफिट में होती है आपकी मुस्कान। चाहे ऑफिस से सीधा डिनर हो, फैमिली गैदरिंग हो, या दोस्तों के साथ एक छोटी सी आउटिंग, एक वेल फिटेड आउटफिट और कम्फर्टेबल फुटवेयर आपको पूरी शाम फ्रेश महसूस कराएगा। सो यही था आज का अल्कोहल फैशन टिप। फैशन को रखिए सिंपल, एलिगेंट और अपनी पर्सनालिटी के साथ। अल्कोहल फैशन, जहां हर आउटफिट के साथ मिलता है स्टाइल और कॉन्फिडेंस।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय अल्कोहल फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।

दिन भर की दौड़ के बाद शाम का अपना ही सुकून होता है। सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है, सर के घर की तरफ फली जाती है और रेडियो पर बजते हैं प्यार भरे गाने जो दिल तक पहुंच ही जाते हैं। चाहे आज का दिन कितना भी व्यस्त रहा हो, शाम हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं बल्कि उन लम्हों का भी नाम है जो हम अपनों के साथ है जीते हैं। तो बस सफर का मजा आप लीजिए, मुस्कुराइए और रफ्तार वाइब्स के साथ ये रोमांटिक ट्रैक्स आप भी एंजॉय करते रहिए। आई होप यू हैविंग अ गुड टाइम। घर पर हो तो बच्चों के साथ, मम्मी पापा के साथ या खुद के साथ, अभी कई लोग अकेले रहते हैं लेकिन आप खुद को अकेले मत पाइए क्योंकि हम आपके साथ हैं हमेशा 24 घंटे। एंड यस, यहाँ पर एक दो मैसेजेस वी कैन सी, कई लोग बर्थडेज भी मना रहे हैं। सो वेरी हैप्पी बर्थडे टू हिमांशु, हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो जी हजारों साल ये हम विश करते हैं आपके नाम फ्रॉम द होम होल फैमिली, आपको हैप्पी बर्थडे। एंड यस, यहाँ पर रेशमा राम जतन है प्लान डे खुश से, नेक्स्ट गाना आप अपने पति विराज, मामा सीता, पापा दीवान, दीपा, रति, ओजस्वी, बोबी, किशन, सचिन, लविश के नाम डेडिकेट करना चाहती है। एंड यस, यहाँ पर ऑल्सो नॉर्मल मैसेजेस पर हम देख रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे मैसेज आया है। सो हैप्पी बर्थडे टू भैया केविन, सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे, विशिंग हिम लोड्स ऑफ लव, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आज बल। सो रामेशा की ओर से जो बॉलर रहते हैं आपको हैप्पी बर्थडे पुश कर रहे हैं एंड द होल फैमिली एज वेल, हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपको। एंड वी ऑल्सो हैव अमृता रामलोल कानूज से है। अमृता जी कैसी है आप? शादी की सालगिरह आप मना रही है पति किशन, तो दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी बच्चों की ओर से आपको गुड विशेस। गिरीश, अंशिका, समीक्षा, आयांश और द होल फैमिली एज वेल। क्या है कि कभी कभी आपके मैसेजेस नॉर्मल मैसेजेस पर द होल मैसेज नहीं आता है, कट जाता है, लेकिन जितना आया है हमने पढ़ लिया है। सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी।

घड़ी मिलाते चलिए, शाम के 6 बजे हैं। सभी का इस बुलेटिन में हार्दिक स्वागत, नमस्कार और आदाब। शाम 6 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले आज की सुर्खियां। आज पारित होने से पहले राष्ट्रीय सभा में अप्रोप्रिएशन बिल तीसरी परत पर पेश, इससे नए वित्तीय साल के लिए खर्च रकम पर मंजूरी मिल जाएगी। आज सुबह विपक्ष नेता का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन, समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभों को संबोधित, जो पेंशन प्रणाली पर थी आधारित।

0: परामर्शदाता कंपनी क्रोल की रिपोर्ट में सामने आए कुछ तथ्यों को एफसीसी और पुलिस को सौंपा जाएगा। इस कंपनी को या मॉरिशस के विमानों की खरीद और बिक्री से जुड़े मामलों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान केंद्र में रहा। विदेश की खबरों में वेनेजुएला में आए जोरदार भूकंप में मारे गए लोगों की संख्या 1,700 पार। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पेश समाचार विस्तार से। आज पारित होने से पहले राष्ट्रीय सभा में अप्रोप्रिएशन बिल तीसरी पढ़त पर पेश किया जाएगा। इससे नए वित्तीय साल के लिए खर्च रकम पर मंजूरी मिल पाएगी और कई कदम भी अमल में लाए जाएंगे, जिनमें से कुछ का पालन कल से ही किया जाने लगेगा। आज सुबह विपक्ष नेता का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभों को संबोधित रहा। उन्होंने जानना चाहा कि क्या पेंशन प्रणाली में सुधार के कदमों को लेकर समाज सुरक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच परामर्श हुआ है या नहीं। और मंत्री अशोक सुभो ने बताया कि परामर्श सत्र नहीं लगाए गए, लेकिन ऐसा सुधार अनिवार्य है और पिछले साल प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने ऐसे कदमों पर बातचीत की थी और कुछ ऐसे ही सुझाव प्रस्तावित भी किए थे। परामर्शदाता कंपनी क्रोल की रिपोर्ट में सामने आए कुछ तथ्यों को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन और पुलिस को सौंपा जाएगा। इस कंपनी को एयर मॉरिशस के विमानों की खरीद और बिक्री से जुड़े मामलों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राष्ट्रीय विमानन कंपनी के पूर्व प्रशासक सता अब्दुल्ला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये जानकारी मंगलवार को राष्ट्रसभा में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान सामने आई। संसदीय कार्यवाही के इस सत्र में डॉ नवीन राम गुलाम ने पेंशन से जुड़े एक प्रश्न का भी उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक संस्थाओं की डिफाइंड बेनिफिट स्कीम ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज तथा नेशनल पेंशन फंड का कुल घाटा 166 बिलियन रुपए तक ही पहुंच चुका है। और इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के पहले ही प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन समाज सुरक्षा अशोक सुभों को संबोधित रहा। इस पर पेश है रिपोर्ट।
1: विपक्ष नेता जोले जोंका खास रूप से नेशनल पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड कायम किए जाने में दिलचस्पी दिखा रहे थे, जो कि पेंशन सुधार और पोर्टेबल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड के उन्मूलन का एक स्तंभ है। अपने जवाब में समाज सुरक्षा मंत्री ने सबसे पहले इस सुधार के क्रोनोलॉजी पर बात की और इस बात पर जोर दिया कि नई प्रणाली से संबंधित जानकारियों के बारे में जानने के लिए फाइनेंस बिल का इंतजार करना होगा।
2: Stated that he is in favor of maintaining the PRGF. Does it mean that now he is for the abolition of PRGF as mentioned in the annex of the budget speech?
3: Madam Speaker, as I said, the matter is under consideration. We must thank the Prime Minister who has done two things. First, freezing and getting out the ministers from the pension reform. We must commend him. Second, that the Prime Minister and the government table the report of the Commission of Experts. This is what is enabling democratic debates all around the country on the issue of the second and other pillars of the pension reform, okay? I must say to the Honorable Leader of the Opposition, I was one of the main person and trade unionists who fought for the PRGF. Had it not been me, not been the General Workers' Federation, the Joint Negotiating Panel of the Sugar Industry and other trade union, the PRGF that is here now wouldn't have been the same.
1: विपक्ष नेता ने कहा कि स्टेट एज पेंशन को लेकर अस्पष्टता है।
2: कंसर्निंग द एसएपी, विल द हॉनरेबल मिनिस्टर इन्फॉर्म द हाउस ऑन व्हाट बेसिस हैज द सम ऑफ 11,589 हैव बीन कैलकुलेटेड?
3: आई ऑलरेडी रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन, वी आर वेटिंग द डिटेल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। This is what I reply in the Committee of Supply. You were not here.
2: Honorable Minister, is it correct to say that?

0: From January 2027, a person aged 62 years, his pension will decrease by 3,000 rupees.
1: As I stated, the matter is being finalized as a democratic government, and any specification on this issue will be within the finance bill that we've presented to the National Assembly. The leader of the opposition will have an opportunity, as all the members of the assembly, to present his views or challenge or position to what will be presented in the finance bill.
2: मंत्री अशोक सुबो ने कहा कि इसकी शुरुआत तब हुई जब पूर्व सरकार ने अचानक से बिना परामर्श एनपीएफ को हटा दिया और सीएजी को लागू किया.
0: Is the honourable minister aware of the massive outcry from all the trade unions of this country on this pension reform?
1: Yes, I am. I am. These are many of them are my comrades. But let me say it loud and clear. The real arnaque du siècle happened on the 4th June 2020 during the presentation of the 2021 budget. Let me speak. Whereby the government led by Pravin Jagnauth, with Ranganathan Padayachi as Minister of Finance and supported by the Honourable Leader of the Opposition, decided overnight to put an abrupt end to the Mauritian Contributory Retirement Pension System, that is the NPF.
3: आज की संसदीय कार्रवाई की शुरुआत राष्ट्रसभा की स्पीकर के वक्तव्य से हुई. राष्ट्रसभा की स्पीकर शिरीन अमीरुद्दीन ज़िफ़रा ने हर वर्ष 30 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर अपना संबोधन दिया. साल 2018 में स्थापित ये दिवस अंतर संसदीय संघ यानी इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन की स्थापना की तिथि के साथ मेल खाता है. स्पीकर ने संसद सदस्यों की भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला. साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न संसदों द्वारा व्यक्त किए गए अलग अलग विचारों और मतभेद का सामना सम्मान करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है. और पीएमक्यूटी सत्र के दौरान संसदीय कार्रवाई के सत्र में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पेंशन से जुड़े एक प्रश्न का उत्तर दिया. उन्होंने बताया कि सार्वजनिक संस्थाओं की डिफाइंड बेनिफिट स्कीम्स ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज तथा नेशनल पेंशन फंड का कुल घाटा 166 बिलियन मॉरिशस सीए रुपए तक पहुंच चुका है. जरा विस्तार इस रिपोर्ट में.
2: सांसद बिजन का प्रश्न है. मॉरिशस की ओर से दिसंबर 2014 से दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान खरीदे गए और बेचे गए विमानों की संख्या पर केंद्रित था. प्रधानमंत्री ने कहा,
4: ड्यूरिंग द पीरियड दिसंबर 2014 टू दिसंबर 2024 एयर मॉरिशस लिमिटेड हैड डिस्पोज्ड ऑफ 4 एयरक्राफ्ट्स. इन जून 2021 एयर मॉरिशस एंटर्ड इनटू अ कंसाइनमेंट एग्रीमेंट विद अ प्राइवेट कंपनी फॉर द डिसैम्पलिंग ऑफ द 2 A340-300 एयरक्राफ्ट. The net loss incurred for the sale of these aircraft was approximately 1.2 billion rupees. During the same period, Air Mauritius Limited phased in 11 aircraft into its fleet. During the period 2014 to 2024, 11 aircrafts were grounded for a total of 100 times. The reasons for the groundings were essentially due to various technical issues and availability of spare parts and spare engines and supply chain constraints.
2: इसके अलावा प्रधानमंत्री ने क्रॉल मिडिल ईस्ट कंसल्टेंसी लिमिटेड की रिपोर्ट पर भी बात की, जिसे राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने एक स्वतंत्र न्यायिक जांच चलाने के लिए कार्य सौंपा. फ्लीट के बढ़ाए जाने पर भी बात हुई.
4: I understand that there has been concerted acts of conduct on the part of the former chairperson of Airport Holdings Limited and a number of senior Air Mauritius officials to favour the leasing of aircraft by Air Mauritius from a very specific lessor. Such conduct could tantamount to a criminal conspiracy to prejudice the other bidders and Air Mauritius Limited. Furthermore, I understand that falsified and misleading reports were submitted to the then board in the full knowledge of two persons, namely the former chairperson of Airport Holdings Limited, Mr. Ken Oyong, and the former Chief Executive Officer of Air Mauritius, Mr. Kaku, with the objective of justifying the purchase of an additional A350-900 aircraft from Airbus, contrary to the

0: The internal reports to the effect that the A330 aircraft, rather than an A350 aircraft, was going to be in the best economic interest of Air Mauritius Limited. I also understand that the lease of an aircraft from the particular lessor has been preceded by inspections of the aircraft overseas by Air Mauritius officials and other persons. The inspection reports omitted essential matters affecting the airworthiness of the leased aircraft. This led Air Mauritius to incur massive expenses to make the aircraft airworthy. Air Mauritius intends to institute disciplinary proceedings against the responsible officers. Finally, Mr. Deputy Speaker, I understand that the former administrators of Air Mauritius Limited, namely Mr. Sattar Abdullah, could be sued for damages for negligence in connection with the disposal of an A332 aircraft during the period of administration of Air Mauritius Limited, as government bailout money was used to repay foreign creditors and SBM holdings in circumstances showing clear negligence by the administrators in the exercise of the duty.
1: Sansad Biranger ne janna chaha ki America ke saath jin do samjhoton par hastakshar kiye gaye, unka maksad kya hai? State Partnership Program Agreement or Acquisition and Cross-Servicing Agreement.
0: Neither the State Partnership Program nor the proposed Acquisition and Cross-Servicing Agreement constitutes a military alliance or a defense treaty. There is no provision in any of these two agreements to authorize the establishment of foreign military bases, the permanent stationing of foreign military personnel, or the transfer of weapons. All cooperation remains subject to the laws of Mauritius and the sovereign decisions of the government of Mauritius. These frameworks are intended solely to strengthen the operational capabilities, resilience and preparedness of Mauritius in addressing contemporary security challenges through cooperation with trusted international partners.
1: सांसद ओमिर को जवाब देते हुए डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बंदूकों से संबंधित जानकारियां दी। पहली जनवरी 2021 से 25 जून 2026 तक 616 नए लाइसेंस दिए गए, 4264 को रिन्यू किया गया, 8 को रिवोक किया गया और सस्पेंशन नहीं हुआ। इसी अवधि के दौरान 4 हथियारों को लापता घोषित किया गया, 14 को चुराए गए घोषित किए गए और 10 दिख नहीं रहे हैं ऐसा कहा गया। 32 हादसे पेश आए हैं जिनमें हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और जिनसे लोग घायल हुए हैं या तो अपनी जान गंवा बैठे हैं। जांच जारी है। वीजा पर सांसद इतवारिया के एक प्रश्न का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि मॉरिशस एक उदारवादी शासन अपना रहा है, लेकिन इमिग्रेशन के कुछ शर्तों का पालन करना चाहिए, जैसे पर्याप्त वित्तीय माध्यम जिससे ठहराव का खर्च वहन हो सके और मुनाफे वाली गतिविधि ना हो। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि अभी 15 देशों के नागरिकों ने मॉरिशस में प्रवेश पाने के लिए एक वीजा हासिल करने की मांग की है। उन्होंने याद दिलाया कि उनके मंत्रालय में दफ्तर में इलेक्ट्रॉनिक वीजा के एक नए डिजिटल सिस्टम पर काम चल रहा है। इसकी बदौलत गलत इरादे से मॉरिशस आने वालों से संबंधित खतरों को कम किया जा सकेगा और इसकी बदौलत हवाई अड्डे पर इंतजार करने वाले लोगों की तादाद भी कम की जा सकेगी।
2: कटनी की अवधि शुरू हो चुकी है और कई इलाकों में छोटे खेतीहर भी काम पर लग गए हैं। 6 महीने बाद अब दोबारा सुबह भोर में उठ जाना और खेत जाने के लिए तैयार होना। सेंट जूलियन डुटमॉ में कल कटनी शुरू हुई। इस साल इस इलाके में अच्छी बारिश के कारण फसल ज़्यादा अच्छी होने का अनुमान लगाया गया है। देश के पूर्व में पहली बार ऐसी योजना कायम। बजट 2026-2027 में सेंटर दे फ्लैक के डॉक्टर ब्रूनो चोंग अस्पताल को एक रेजिडेंशियल रिहैबिलिटेशन सेंटर में बदला जाएगा। इसका मकसद है ड्रग्स के शिकार लोगों को सहारा देना। इस पर योजना को अमल में लाए जाने के लिए संबद्ध साझेदारों के साथ बातचीत जारी है। इस बीच देश के इस हिस्से के ड्रग्स के शिकार लोगों की मदद के लिए एडिक्टोलॉजी विभाग की सेवाएं वहीं पर डॉक्टर ब्रूनो चोंग स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हैं। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 105 साल पूरे होने के अवसर पर मॉरिशस में चीन के दूतावास द्वारा एक स्वागत समारोह किया गया। इस समारोह में कई महानुभाव उपस्थित रहे। चीन की राजदूत वांग शिफांग ने 1921 में पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक के उसके सफर का उल्लेख किया। विदेशी खबरों में वेनेजुएला में भूकंप के दो जबरदस्त झटकों के बाद मारे गए लोगों की संख्या 1,700 पार हो गई है।

0: कई लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। मलबे तले लोगों को जीवित निकालने की आशा दिन ब दिन कम होती जा रही है। इस बीच वहां के निवासी सरकार से ज्यादा समर्थन की मांग कर रहे हैं। अंत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात। राउंड ऑफ 32 में कई टीमें कमाल दिखा रही हैं। रविवार को जहां कनाडा ने 1-0 से साउथ अफ्रीका को हराया, वहीं कल ब्राजील और जापान की टीम आपस में टकराई। जापान अंतिम समय तक टिका रहा, लेकिन ब्राजील की टीम बाजी मार गई। स्कोर ब्राजील 2 जापान 1। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
1: ब्राजील को जमीन आसमान एक करना पड़ा, तब जाके जापान को अंत में हरा पाई ब्राजील की टीम। पासा पलटना पड़ा क्योंकि पहला गोल जापान ने स्कोर किया था। ह्यूस्टन के एनर्जी स्टेडियम में बेस्ट ऑफ 32 में ब्राजील इंजरी टाइम में जाके मैच जीतता है। जापान के खिलाड़ी शुरू से दबाव डाल रहे थे, तब जाकर दानिलो की गलती पर केशु सानो के शॉट पर गोल बनता है। फर्स्ट हाफ में जापान 1-0 से आगे, सेकंड हाफ में ब्राजील मैच में अपना दबदबा बढ़ाता है, तब जाके कासिमिरो इक्वलाइज करता है 56वें मिनट पर। गैब्रियल मार्टिनेली जिसे सब्स्टिट्यूट के रूप में भेजा गया, इंजरी टाइम में ब्राजील का मसीहा बना, सातवें आसमान पे भेजता है ब्राजील को। ब्राजील 2 जापान 1। अगले राउंड में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या मोरो से होगा।
2: ब्राजील हेडिंग थ्रू टू द राउंड ऑफ 16।

0: और आज दो मैच खेले जा चुके हैं, पैराग्वे जर्मनी और उसके बाद मोरक्को नेदरलैंड्स। दोनों मैचों में स्कोर ड्रॉ रहा। पेनाल्टी शूटआउट पर पैराग्वे ने जर्मनी को, मोरक्को ने नेदरलैंड्स को खेल से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। आज मैच खेला जाएगा रात 9 बजे कोट डिवोर और नॉर्वे के बीच। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: आज रात 9 बजे आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से। आइवरी कोस्ट के हाथी लोग वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में पहली बार खेल रहे हैं। उधर नॉर्वे की टीम में अर्लिंग हालैंड है, जो अभी तक 4 गोल स्कोर कर चुका है 2 मैच में। लोहा लोहे को काटेगा। इस मैच को आप देख पाएंगे MBC के स्पोर्ट्स 11 पर रात्रि के 9 बजे। न्यूयॉर्क में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से। यूरोप की दो टीमें आमने सामने, करीबी मामला होगा। फ्रांस के ले ब्लू अभी तक सबको हरा कर आए हैं, यहाँ पर 3 मैचों में 3 जीतें और क्वालिफाई हुई, इसलिए फ्रांस की टीम फेवरेट है। उस्मान देम्बेले पिछले मैच में 3 गोल स्कोर कर पाया था नॉर्वे के खिलाफ। स्वीडन की टीम काफी कठिनाई से क्वालिफाई हुई, अपने ग्रुप में 3रे स्थान पर आके। इसाक की टीम में संगठित खेल, अनुशासन, इस टीम से बच के रहना होगा। मेक्सिको इक्वाडोर का स्वागत करेगा। मेक्सिको की टीम अभी तक सबसे शानदार परफॉर्मेंस देकर आई है, 3 मैचों में 3 जीते, 6 गोल स्कोर करके और खासतौर पर 1 भी गोल कंसीड नहीं किया है। इक्वाडोर अपने ग्रुप में पहले लड़खड़ा रही थी, पर आखिरी मैच में जर्मनी को हराकर क्वालिफाई हुई। फेवरेट मेक्सिको है, पर इक्वाडोर में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। कल सुबह 5 बजे ये मैच खेला जाएगा।
0: अब चले जाते हैं मौसम का हाल।
2: दक्षिणी क्षेत्र से जो बादल बढ़ रहे हैं, वे आज रात के दौरान हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात मौसम अच्छा रहेगा। आज रात और कल सुबह के दौरान कुछ बादल घिरने लगेंगे, मुख्य रूप से टापू के दक्षिणी हवाई ढलान पर और ऊंचाइयों पर। दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। दक्षिण की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कल दिन के दौरान बढ़ने लगेंगे। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 2.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी एवं पूर्वी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 15 और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 20 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 25 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:41 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:46 पर सूर्योदय।

0: देश विदेश की इन खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और टेक्निकी पर शिव का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

शोक समाचार सुनिए। कौलीला शमेघोनी में कौलीला शमेघोनी में 93 साल की 93 इयर्स ओल्ड की श्रीमती पुष्पावती शिवदयाल, श्रीमती पुष्पावती शिवदयाल पैदाशी नाम भगन और जो मानो के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और पहले भोइन रोड सुगे नाम रहा करती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनकी बेटी शोभा बहू के मकान कौली लाश में घोइने से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 8 PM। रॉ रोड पेटी जुली में 51 साल की 51 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मधुमती बिसेसर पैदाशी नाम हीरा और जो मधु के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति धर्मदेव राकेश बिसेसर के मकान रॉ रोड पेटी जुली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 8:11 AM। केडुलेन तायाक में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री अमुगम मुचिया जो सुबैन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी वानेसा मुचियों के मकान केडुलेन तायाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 8:10 AM। जगन्नाथ रोड रिव्याजुहां पर में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री जयकरण बिसुन की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी प्रमिला लोहर के मकान जगन्नाथ रोड रिव्याजुहां पर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 8:09 AM। शाये रोड मोताई ब्लॉश में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुबा लक्ष्मण पैदाशी नाम उबाई और जो सुबा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके पति यशदेव लक्ष्मण के मकान शाये रोड मोताई ब्लॉश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 8:01 PM। रोथ्रेबो नंबर चार वाकवा में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री अनिरो अर्जुन बालू जो अनिरो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके मकान रोथ्रेबो नंबर चार वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 8:09 AM। गोल्ड स्मिथ स्ट्रीट क्षमा कीजिए गोल्ड स्मिथ स्ट्रीट कॉम्बेनुआ पेटिट रिविया में गोल्ड स्मिथ स्ट्रीट कॉम्बेनुआ पेटिट रिविया में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री नित्यानंद सिंह नायक ओरी श्री नित्यानंद सिंह नायक ओरी जो नीतीश कोलो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी गुरुवार को दिन के 1:30 बजे उनकी मां तारा नायक ओरे के मकान गोल्ड स्मिथ स्ट्रीट कॉम्बेनुआ पेटिट्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शुबैल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन थर्सडे 8:01 PM। रामजीन लेनो कूले में

0: 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड के श्री हेमराज गुलोही, श्री हेमराज गुलोही की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके मकान रामजी लेनो कुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM2, a radio must-see.
2: Raftar Vibes, filmy rides.
3: RM2.

0: शाम अब धीरे धीरे अपनी बाहों में पूरे मर्शस को समेट रही है। सर्दी का मौसम है ना, इसलिए ये अंधेरा अभी आजकल थोड़ा जल्द ही दस्तक दे देता है। हवा में हल्की सी ठंडक है और ऐसे मौसम में भी दिल कुछ सुकून भरे गीत सुनना चाहता है। सो लेट्स गेट टू द थर्ड आवर ऑफ रफ्तार वाइब्स। हेलो जी, नमस्ते, वेलकम, सभी का हम स्वागत करते हैं इन द सेकंड, इन द थर्ड आवर ऑफ रफ्तार वाइब्स। आखिरी आवर है रफ्तार वाइब्स का, तो आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, घर पर हो, ऑफिस पर हो, काम अभी कर रहे हैं, कुछ भी खाना बना रहे हैं, डिनर की तैयारी में लगे हुए हैं, या खुद आप डिनर ले रहे हो, आपको हम शुभ आहार कहते हैं एंड हैव अ गुड गुड टाइम हमारे खूबसूरत गानों के साथ। ये शाम, ये मौसम और ये गाने एक खूबसूरत सा एहसास लेकर आए हैं। सो स्टे राइट ट्यून्ड, दिस इज आरएमटी रेडियो मस्ती, रिया के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं रफ्तार वाइब्स।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: आरएमटी

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती
2: RM2
0: रेडियो मस्ती।

0: to Radio Musti.
1: You're listening to RM2 or Radio Musti.

वही सर्दी का मौसम भी अजीब होता है, ठंडी हवा चेहरे को जरूर छूती है लेकिन दिल को अक्सर किसी अपने की याद दिला ही जाती है। एंड एक कप अगर गर्म चाय मिल जाए, एक लंबी ड्राइव और बैकग्राउंड में ये प्यारी सी गाने, कभी कभी इतनी सी बात ही पूरी शाम को यादगार बना देती है। अगर आज कोई ऐसा इंसान है जिसे आप काफ़ी दिनों से फ़ोन नहीं कर पाए तो शाम को एक छोटी सी कॉल आप ज़रूर कीजिए, हो सकता है कि आपकी आवाज़ ही उनकी शाम को रोशन कर दे। एंड वेल, थोड़ा सा समय तो निकालना ही

0: चाहिए, थोड़ा सा, हम ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, बट थोड़ा सा समय आप अपने लिए, अपनों के लिए निकाला करें। क्या है कि इससे आप ही को खुशी मिलेगी। एंड खुशी के बारे में बात करें तो हमारे गाने हैं एकदम मस्त, जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। और आई होप कि इस गाने के साथ जो हम नेक्स्ट चलाने वाले हैं, ये आपके चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल लाकर ही छोड़ेगा।
1: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चल करो, दिल से बॉलीवुड रेडियो मस्टी।

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Masti.
3: A very good evening. आप सभी को रेडियो मस्ती पर बज चुके हैं 7:06. ये है इवनिंग लाउंज, दिन की भागदौड़ के बाद सुकून की कुछ हसीन पल, और अभी तक मैं ही हूँ आपकी रिया, आपके साथ हूँ। और अब अगले कुछ घंटों तक हम साथ बताएंगे खूबसूरत गीतों के साथ। जी हाँ, अभी हम लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत गाने। अभी अभी आपने सुना साथ ही या तूने क्या किया, एक ऐसा गाना जो हर बार दिल को उसी प्यार से छू जाता है। कुछ गाने समय के साथ पुराने नहीं होते बल्कि और भी खास बन जाते हैं। इस समय यह कई घरों में रात की खाने की तैयारी यानी कि डिनर की तैयारी हो रही

0: है, कहीं डाइनिंग टेबल सज चुकी है और कुछ लोग अभी भी अपना काम पूरा करने में लगे होंगे। जहां भी हैं आप, उम्मीद है रेडियो मस्ती आपका साथ निभा रहा है। और ये भी तो आप सोचिए कि ट्यूसडे भी धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, एक और दिन हमारी जिंदगी की किताब में जड़ गया। समय वाकई कितनी खामोशी से दौड़ता रहता है, इसलिए हर दिन से एक खूबसूरत याद जरूर बना लीजिए, क्योंकि यही यादें कल की मुस्कान बनती हैं। तो आइए इस बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल सफर में हम साथ है चलेंगे और गाने एंजॉय करते रहेंगे। इट्स योर इवनिंग लाउंज रिया के साथ है।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Masti. Well, बाहर ठंडी हवा चल रही है, अंधेरा भी सर्दी के मौसम में जल्दी उतर जाता है, लेकिन घर के अंदर बनती हुई गर्म रोटियों की खुशबू, चाय या सूप की भाप और रेडियो पर बजती प्यारी गानी, बस इसी का नाम तो सुकून है। जिंदगी हमेशा बड़ी खुशियों से नहीं बनती, कभी कभी छोटी छोटी बातें ही सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। परिवार के साथ बैठकर खाना खाना, किसी अपने की हंसी सुनना, या बस खिड़की के पास बैठकर अपना फेवरेट गाना ही सुन लेना। तो इस शाम को आप जल्दी में मत गुजारिए, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही लम्हे जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। और इन्हीं लम्हों का साउंडट्रैक लेकर इवनिंग लाउंज आपके साथ है, सिर्फ रेडियो मस्ती पर। दिस इज मी, आपकी अपनी ही रिया, एंड आप सुन रहे हैं इवनिंग लाउंज विद द मोस्ट ब्यूटीफुल गाने।

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti.
3: कभी डिनर के बाद बस दो मिनट के लिए खिड़की खोलकर बाहर देखिए, ठंडी हवा, शांत सी सड़कें, आसमान में चमकते सितारे और एक अजीब सा सुकून। दिन भर की आवाज़ें धीरे धीरे कम हो जाती है, तब एहसास होता है कि जिंदगी को हमेशा तेज रफ्तार की जरूरत नहीं होती। कभी कभी खामोशी भी बहुत खूबसूरत गीत गाती है। आज की शाम भी वैसे ही है, ठंडी, प्यारी और यादों से भरी हुई। चलिए इस खामोशी को एक और हसीन धुन से सजा देती है द नेक्स्ट ट्रैक दैट वी हैव, इट्स अ ब्यूटीफुल वन। लेकिन इससे पहले आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ते हैं। श्रेष्ठा दानी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आप है फोन जी सकते और एक प्यारा सा गाना आप अपने हबी दलगीश दानी एंड बहन समीता और भांजी भांजियों के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं। ऑलराइट, जरूर चलाएंगे नेक्स्ट गाना उनके नाम। नेक्स्ट गाना ऑल्सो जाता है फॉर मम्मा गीता सिंह, द हैप्पीएस्ट बर्थडे।

जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको. एंड ऑन द वे टू सरप्राइज हर फॉर अ डिनर डेट, बहनों भाइयों के साथ बेटी आशना है, पति आतिश और बेटा है कार्तिक, आपको विश कर रही है वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड एक और बर्थडे मैसेज है यहाँ पर, हैप्पी बर्थडे टू भाई प्रीतम जो है कप्पा मालोगसी, और आपको बेस्ट विशेस दे रही है आपकी बहनी ज्योति, प्रीति, दिव्या, ममा जयंती है, और आपकी भांजी भी है लविश. और ऑल्सो वी हैव हमारे साथ कनेक्टेड है मनीष. मनीष आप हैं रिव्या जोपा से, और हैप्पी बर्थडे विश करती है टू नीरा. नीरा का जो जन्मदिन है सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपको, बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस. एंड ऑल्सो यहाँ पर केविन साथ दे रहे हैं, सो केविन आप साथ निभाते चलिए एंड जाइए नेक्स्ट ट्रैक एंजॉय कीजिए.

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti. हर दिन हम अपनी ज़िंदगी की डायरी में एक नया पन्ना लिखते हैं। कुछ पन्ने हंसी से भर जाते हैं, कुछ में थोड़ी परेशानी होती है और कुछ में बस बिल्कुल सादगी होती है। लेकिन सालों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो याद सिर्फ वही रहती है जो दिल को छू गई हो। इसलिए हर दिन में एक ऐसा लम्हा आप ज़रूर बनाएंगे जिससे याद करके आप ज़रूर मुस्कुराएंगे। शायद वो एक कप चाय हो अपनों के साथ, एक गाना हो या किसी अपने के साथ दो मिनट के बाद। अब इसी मुस्कान के साथ है चलते हैं अगले गाने की तरफ। एंड लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर इवनिंग लाउंज में हम चला रहे हैं बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गाने सिर्फ आपकी ट्यूसडे इवनिंग को और भी खूबसूरत बनाने के लिए।

0: Evening Lounge,
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Masti.
3: राइट, रेडियो मस्ती पर बज चुके हैं 8:06 और इवनिंग लाउंज का दूसरा घंटा शुरू हो चुका है। मैं हूँ आपकी अपनी ही रिया और अगले एक घंटे तक सिर्फ दिल को छू लेने वाले रोमांटिक और सॉफ्ट गाने आपके साथ रहेंगे। अब रात धीरे धीरे और गहरी हो रही है, ज़्यादातर लोग घर पहुँच चुके हैं, कहीं डिनर के बाद परिवार के साथ बातें हो रही है, कहीं गर्म चाय का एक कप बन रहा है और कुछ लोग अभी भी काम पूरा कर रहे हैं। ऐसे ही लम्हों के लिए तो होते हैं कि गाने जो आवाज़ कम रखते हैं लेकिन एहसास बहुत ही गहरा छोड़ जाते हैं। कुछ धुनें हमें मुस्कुरा देती है और कुछ किसी अपने की याद दिला ही देती है और कुछ बस दिल को एक सुकून सा दे जाती है। तो जहाँ भी है आप, अपनी शाम को थोड़ा और हसीन बनाइए, लाइट्स थोड़ी हल्के रखिए और दिल को हल्का रखिए। इस इवनिंग लाउंज के साथ है चलिए का और खूबसूरत सफ़र, एक घंटे का सफ़र हम तय करते हैं साथों में, द लास्ट आवर है जहाँ पर हम बस आप ही के पसंदीदा गाने ज़रूर चलाएंगे। आप ही के पसंदीदा गाने हैं यहाँ पर, जी हाँ, हमें आपकी चॉइस पता है एंड

वैसे हम मैसेजेस देख रहे थे, यहाँ पर किसी ने एक रिक्वेस्ट भेजा था, आई थिंक फ्रॉम द मूवी कहुना प्यार है, जो हम जरूर चलाएंगे आपके नाम. राइट टू द नेक्स्ट ट्रैक गुजार टू ऑल आवर लवली लिसनर्स, दैट्स कहुना प्यार है मूवी से, ना तुम जानो ना हम.

0: Evening Lounge,
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Masti.
3: वल्ला हर रोमांटिक गाने की एक अलग कहानी होती है। कुछ गीत पहली मुलाकात की याद बन जाते हैं, कुछ किसी लंबी ड्राइव के हमसफर, और कुछ बस इसलिए खास होते हैं क्योंकि वो जिंदगी की किसी खूबसूरत मोड़ पर साथ बज रहे हैं। अजीब बात है ना, हम गाने नहीं उनसे जुड़े लम्हे याद रखते हैं, इसलिए जब भी कोई पुरानी धुन बजती है दिल एक पल के लिए वहीं लौट जाता है बिना किसी कोशिश के। आज की रात भी उन्हीं यादों, उन्हीं एहसास और उन्हीं प्यार भरी धुनों के नाम। अगर आपके दिल में भी कोई ऐसा गाना है जो हमेशा मुस्कान ले आता है तो उसे आप महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते। और टॉकिंग अबाउट गाने, तो हमारे पास बहुत ही खूबसूरत गाने हैं आपकी इस ट्यूसडे को और भी नायाब बनाने के लिए, और भी मनोरंजक बनाने के लिए। स्टे राइट ट्यून टू आरएम2 रेडियो मस्ती। दिस इज मी आपके रिया आपके साथ इन योर इवनिंग लाउंज।

कहते हैं कि प्यार हमेशा बड़े बड़े अल्फाजों से नहीं होता, कभी एक कप चाय बना देना, किसी का इंतज़ार कर लेना, घर पहुंचते ही पूछना सफ़र कैसा था, बस इतनी सी बातें ही तो मोहब्बत की असली भाषा होती है। और शायद इसलिए रोमांटिक गाने हमें इतने पसंद आते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियाँ अक्सर सबसे छोटी बातों में छिपी होती है। अब दिल को और भी प्यारे एहसासों से भर देते हैं एक और रोमांटिक गाने के साथ। We've got this next one, that's a beautiful one. हमारे लिसनर्स को आम शो के बहुत ही पसंद होगा ये गाना। जो भी आप कर रहे हो, आई होप यू हैविंग अ गुड गुड टाइम। दिस आरएम टू रेडियो मस्ती, आप सुन रहे हैं इवनिंग लाउंज रिया के साथ। और ये खूबसूरत गाने हमारे लिसनर्स के नाम जाता है। आई होप कि आपका ये ट्यूजडे इवनिंग बहुत ही अच्छे से जा रहा है और ये अच्छे तरीके से खत्म भी होगा, समाप्त भी होगा। कहते ना कि जब दिन खत्म होता है तो एक नया दिन आपको मिलेगा। रात्रि खत्म होती है, नया दिन मिलेगा, यानी कि सूरज आपको दिखेगा, एक नई रोशनी दिखेगी। सो लेट्स कीप पॉजिटिव, सकारात्मक रहने से हमारा जो शरीर है ये स्वस्थ रहता है और मन उससे भी स्वस्थ रहता है। सो जस्ट बी कूल और गाने आप एंजॉय करते रहिए।

0: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services, TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others, TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Office's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
1: RM2, Radio Musti.
2: Evening Lounge.
3: Evening Lounge.
1: RM2,
2: Radio Musti.
4: आठ बजकर 52 मिनट और इसी के साथ टाइम हो चला है मेरे जाने का, बाय-बाय कहने का. वेल, अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी मुलाकात बहुत ही जल्द होगी, क्योंकि हमारी मुलाकात शायद एक महीने बाद होने वाली है. हम क्या है, मैं एक लंबी सी छुट्टी में जा रही हूँ, लेकिन आप हमेशा मेरे दिल में ही बसेंगे. एंड आई एम ऑलवेज कनेक्टेड टू रेडियो, एज यू ऑल नो कि हमारा जो रिश्ता है बहुत ही खास है. एंड आई विश ऑल माई लवली लिसनर्स A very happy Tuesday evening. अभी का जो समय है बहुत ही प्यारा है. And आशा करती हूँ कि मेरे आने के बाद वही प्यार रहेगा. And गाने तो हमेशा आरम टू रेडियो मस्ती पर बहुत ही खूबसूरत गाने बजते रहते हैं. So the next one, it's a very special song. और ये हम

0: आप सभी के नाम डेडिकेट कर रही है. वैसे चलिए पहले एक दो मैसेजेस यहाँ पर देख लेते हैं. वी हैव कौन, वैसे आपने नाम तो नहीं लिखा लेकिन काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ कनेक्टेड है. आई होप यू हैविंग अ गुड गुड टाइम. और नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम भी हम डेडिकेट ज़रूर करेंगे. एंड ऑल्सो यहाँ पर सीता गीता बलराम परिवार है शतबिनाग से हमारे साथ कनेक्टेड है. होप यू हैविंग अ गुड टाइम यू टू. एंड व्हाट्सएप पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी सारे मैसेजेस हमारे साथ. ज्योति जुड़ी हुई है. हेलो ज्योति, हाउ आर यू. एंड नेक्स्ट लविश के नाम भी जाता है गाना. हम आप सभी के नाम ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं. और चलिए मुलाकात हमारी अगस्त महीने में होगी. तब तक यू टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड बहुत बहुत बहुत सारा प्यार. टेक केयर.
1: You're listening to RM2, a radio.

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: A very good evening, ladies and gentlemen. स्वागत आप सभी का लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर. और मौका मिल गया कि आपके साथ ऐसे मौके पर जहाँ पर म्यूजिक ही म्यूजिक है, चारों तरफ थोड़ी सी शांति और दिल की बात, दिल की धड़कन सुनने का मौका मिल गया. तो बस अगले तीन घंटे सिर्फ आपके नाम, म्यूजिक के नाम. अच्छा, दिन ठीक रहा? वैसे किसी बात ने आपको स्माइल तो जरूर दी होगी और किसी बात के चलते थोड़े सोचने पर मजबूर हो गए होंगे. क्या करें साहब, जिंदगी का बैलेंस ही कुछ ऐसा है, कभी ऊपर कभी नीचे. और अभी बस म्यूजिक सुनिए, आंखें मीचे. लेट्स कंटिन्यू मैजिक ऑफ द म्यूजिक के साथ.

कभी नोटिस किया है कि हम पूरे दिन डेडलाइंस के पीछे भागते रहते हैं और फिर रात को याद आता है कि खुद के लिए तो सिर्फ कुछ मिनट भी नहीं निकाले। आज ही प्रॉमिस करिए कल सिर्फ 10 मिनट, चाहे खाली 10 मिनट अपने लिए जरूर निकालेंगे। और तब तक बॉलीवुड के गाने आपको रिचार्ज करने के लिए बिल्कुल रेडी।

एक मैसेज उन दोस्तों को भेज सकते हैं अभी जिनको आप याद करते हुए फ्रेंडशिप दोस्ती में विश्वास अभी तक रखते हैं, क्योंकि दिन में तो वक्त मिलता नहीं सोचने का कुछ भी। पूछ लीजिए हालचाल कैसे हैं, या फिर बस ऐसी सोचा मैसेज कर दिया, इतना ही करना एक बार फिर से उस रिश्ते को रिवाइव कर देगा। सच कह रहा हूँ।

0: C'est Bollywood. Radio Musti.
1: As you say, sunshine.
0: Sunshine? कहाँ से ढूंढकर लाते हो तुम ये सब प्राचीन वर्ड्स?
1: जहाँ से मैं आया हूँ।
0: ओ, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं?
1: प्यार।
0: Just a tip. हमारी दुनिया में प्यार व्यार नहीं होता, तो शायद आपको खाली हाथ जाना पड़े, क्यों ना?

कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो यादें भी ले आते हैं। स्कूल की कैंटीन, पहली सैलरी, फर्स्ट लव या फिर फैमिली की रोड ट्रिप, अरे हर मेमोरी का अपना एक साउंड ट्रैक होता है। देखते हैं अगला गाना आपको किस पल में ले जाता है।

प्यार सिर्फ किसी और से नहीं, खुद से भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। यू नीड टू लव योरसेल्फ, क्योंकि जब आप खुद ही की वैल्यू नहीं समझेंगे तो फिर दुनिया आपकी वैल्यू क्या समझेगी। तो आज रात एक कॉम्प्लीमेंट खुद को भी दीजिए, क्यों नहीं, अरे आप डिजर्व करते हैं।

लाइफ का हर डिफिकल्ट चैप्टर परमानेंट नहीं होता, ये याद रखिए। आज जो चैलेंज लग रहा है कल वही आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोरी बन सकती है। बस एक स्टेप और एक कोशिश और म्यूजिक को अपना साथी बना के रखिए।

घर वाले कभी कभी ज्यादा टोक देते हैं, कुछ कह देते हैं, लेकिन वही लोग होते हैं जो आपकी ज्यादा फिक्र करते हैं। अरे आपको सही रास्ते पे लाने के लिए कोशिश करते हैं। अगर आज किसी फैमिली मेंबर से थोड़ी सी बातचीत हो गई है तो कल सुबह एक स्माइल के साथ बात शुरू करिएगा, शायद सब कुछ बहुत आसान लगने लगे।

0: मेरी मस्ती सुनते रहो।
1: अगर इस वक्त चाय और कॉफी का कप हाथ में है तो वर्ल्ड कप भी देख रहे होंगे। चलिए जो भी है, हो सकता है कि चाय की चुस्की बातें उसकी करते करते करते बस कुछ याद आ जाए। कभी कभी थोड़ा स्लो होना भी जरूरी है। रात का सुकून, बॉलीवुड का जुनून, परफेक्ट कॉम्बिनेशन।

हर वक्त स्ट्रांग रहना जरूरी नहीं, कभी कभी थक जाना भी नॉर्मल सी बात है। भाई आप सुपरमैन तो है नहीं, बस याद रखिए कि आप अकेला फील कर सकते हैं लेकिन अकेले नहीं, क्योंकि म्यूजिक का ये सफर आज आपको अकेले नहीं रहने देगा।

सपने देखने की कोई एज नहीं होती। शायद आज की स्ट्रगल ही आपकी सक्सेस की हेडलाइन बन जाए, इसलिए खुद पर भरोसा रखिए और हर दिन थोड़ा सा बेटर बनने की कोशिश कीजिए।

आज का दिन खत्म होने से पहले सिर्फ तीन चीजों के लिए थैंक यू बोलिए। हो सकता है रीजन छोटे हो, लेकिन ग्रैटिट्यूड हमेशा बड़ा सुकून देता है।

तीन घंटे का सफर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अगर आज की रात किसी गाने ने, किसी बात ने या किसी याद ने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो तो हमारा ये जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो गया। अपना ख्याल रखिए, स्माइल करते रहिए और याद रखिए हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। तो जल्दी मिलते हैं, ध्यान रखिए, अभी के लिए नमस्कार।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: कभी हमने नहीं

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: हम
1: RM2
2: रेडियो मस्ती
1: फील द मस्ती।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।